0: 94 Center 99.4
1: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty.
3: A very good morning आप सभी को सुप्रभात. आज रविवार 28 जून 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए ठीक 5 बज रही है.
4: Chillax. With Radio Musty.
1: Your number one Bollywood radio station.

0: अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी ही रिया। रेडियो मस्ती पर शुरू हो चुका है आपका फेवरेट सेगमेंट आ रहा है चिलैक्स। आज की सुबह का अपना ही रंग है, थोड़ी देर पहले बारिश ने धरती को हल्का सा नहला दिया और अब जैसे आसमान ने भी एक छोटा सा विराम ले लिया है। हवा में ठंडक है, पेड़ पौधे और भी हरे लग रहे हैं और हर तरफ एक नई ताजगी महसूस हो रही है। वेल इट्स संडे मॉर्निंग, कुछ स्पेशल तो बनता है, इसलिए हम स्पेशल शो आए हैं रिलैक्स में। हम चलाएंगे सदाबहार गाने, पर ये सदाबहार गाने यूजुअल वाले नहीं रहेंगे, पर बहुत ही खास रहेंगे। सो अगर आप गर्म चाय के साथ बैठे हैं और शायद ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं या फिर कंबल में आराम से रेडियो सुन रहे हैं, तो अगले दो घंटे सिर्फ सुकून, अच्छे गाने और मुस्कुराहट के नाम। तो चलिए संडे की शुरुआत करते हैं प्यारे सुरों के साथ, क्योंकि जब सुबह दिल को सुकून दे तो पूरा दिन खूबसूरत बन ही जाता है। नट्टी वगैरह आपके डेडिकेशन मैसेजेस 5499-1294।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Tracks with Radio Musty.
1: कभी सोचा है संडे हमें इतना पसंद क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि आज घर की सुई से ज्यादा हम अपने दिल के सुनते हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई बैकडोर नहीं, बस थोड़ा अपनों के साथ है समय, थोड़ी अपनी पसंद का खाना और थोड़ा अपने लिए भी समय। अगर पूरे हफ्ते किसी का फोन नहीं, किसी को फोन नहीं कर पाया, किसी का फोन नहीं आया, तो आज कर लीजिए उनको फोन। किसी से मिलने का मन हो तो मिल लीजिए, और अगर बस कुछ देर खामोशी में बैठना चाहे तो उसका भी अपना मज़ा है। याद रखिए कि आराम करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना मेहनत करना। इसलिए तो संडेज होते हैं, सैटरडेज होते हैं, बट मोस्ट ऑफ यू सैटरडे को भी काम करते हैं। तो संडे आप ले लीजिए थोड़ा सा खुद के लिए, आप थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं एंड इससे आप को ही बेहतर महसूस होगा। चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ते हैं, एक दो मैसेजेस देख लेते हैं। तो यहाँ देवानंद जी जो डेडिकेट करना चाहते हैं नेक्स्ट गाना फॉर बबीता, दर्शनी, क्रिस्टी, नकुल, अर्शिया एंड रिया, एक गाना फ्रॉम द मूवी सौथन आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, हमने शायद चला दिया है एक गाना फ्रॉम द मूवी सौथन, बट अगर हो पाए तो हम जरूर चलाएंगे। एंड आप कह रहे हैं कि इट्स कोल्ड इन पोविडाउंस, वैसे वहाँ पर तो हमेशा कोल्ड ही है, बट एन्जॉय द वेदर, एन्जॉय द मोमेंट, गाने आप इन्जॉय करते रहिए। हैव अ वंडरफुल संडे। जयशन जी कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग आपको, सब ठीक ठाक, बढ़िया। संडे अच्छी तरीके से शुरुआत हो गई है, आई जस्ट होप सो। एंड यहाँ पर सुनीता जी हैं हमारे साथ, हम मोसमता, और एक ब्यूटीफुल गाना आप अपने लिए और अपनी बेटी सोनम एंड विटिका के नाम डेडिकेट करना चाहते हो। राइट, वी गॉट अ ब्यूटीफुल ट्रैक नेक्स्ट जो हम चलाएंगे हमारे सभी लिसनर्स के नाम। एंड यहाँ पर ऑल्सो मम्मा सुरेखा के नाम गाना जाता है। एंड मैसेज कमिंग फ्रॉम बीटी वर्षा, तो हमारे सभी लिसनर्स जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं इस समय 5:23, नेक्स्ट गाना आपके नाम।
0: Chillax, with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती है, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई।

0: Chillax with Radio Musty.
1: एक छोटी सी बात, हम अक्सर दूसरों की खुशी का ख्याल रखते रखते अपनी खुशी को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं। आज संडे है, आज खुद से भी पूछिए, मुझे किस बात से खुशी मिलती है? शायद गाने सुनने से, किताब पढ़ने से, घर वालों के साथ नाश्ता करने से, या बस बिना किसी वजह से मुस्कुराने से। खुद को समय देना भी स्वार्थ नहीं होता। जी हाँ, ये स्वार्थ कतई नहीं होता। यही तो वो ताकत है जो हमें फिर से मुस्कुराना सिखाती है। और खुद के लिए जीना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालिए एंड हैव अ गुड टाइम अपने आप के साथ। वेल, अगर कुछ लोगों के इर्द गिर्द अपनों का साथ है तो अच्छी बात है, पर अगर आप खुद को अकेला समझते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और जैसे कि हमने आपसे कहा कि खुद के साथ थोड़ा सा समय बिताना अच्छी बात होती है, सो कभी ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। एंड इसी के साथ नेक्स्ट गाने की ओर बढ़ते हैं। एंड लेट मी टेल यू दैट थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे आपकी राशिफल।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: घर में लाते चलिए, पौने छह बज रहे हैं, समय हो चला है आपको बताने का कि आज का दिन आपके लिए कैसे कटेगा। इट्स योर राशि टाइम।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज मन में नई उमंग रहेगी, घर के काम पूरे करने का अच्छा समय है, किसी अपने से अच्छी खबर मिल सकती है, खर्च सोच समझ कर करें, परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। लेकिन नंबर है आज आपका 9।

0: एस ऋषभ राशि।
1: आज धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी रहेगा। छोटी छोटी बातों पर नाराज होने से बच के रहे, रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें और भरपूर पानी पिए, दिन के अंत तक संतोष आपको मिलेगा। लकी नंबर है आज आपका 6।
0: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज बातचीत से कई बातें आसान हो सकती हैं। किसी पुराने दोस्त से संपर्क हो सकता है, नया विचार मन में आएगा, उसे हल्के में ना ले। परिवार का सहयोग मिलेगा, मुस्कान बनाए रखे। लकी नंबर है आज आपका 5।
0: कैंसर कर्क राशि।
1: आज घर का माहौल सुखद रहेगा, अपनों के साथ बिताया समय यादगार बनेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, मन शांत रखेंगे तो हर काम अच्छे से होगा। छोटी सी खुशी भी दिन को खास बना देगी। लकी नंबर है आज आपका 2।
0: लियो सिंह राशि।
1: आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, किसी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने का अवसर आपको मिलेगा। मेहनत का फल धीरे धीरे मिलेगा, किसी की बात ध्यान से सुने, शाम सुकून भरी रहेगी। लकी नंबर है आज आपका 1।
0: वर्गो कन्या राशि।
1: आज योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा दिन है, घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अनावश्यक चिंता छोड़ दीजिए, अपने समय का सही उपयोग करें, दिन संतुलित और सुखद रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 7।
0: लिब्रा तुला राशि।
1: आज मन खुश रहेगा और नए लोगों से मिलने का अवसर मिल सकता है। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। लकी नंबर है आज आपका 8।
0: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज धैर्य और समझदारी से काम लें, किसी पुराने काम में सफलता मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर आपको मिलेगा। मन की बात किसी अपने से साझा करें, दिन अच्छा बीतेगा। लकी नंबर है आज आपका 3।
0: सजिटेरियस धनु राशि।
1: आज नई शुरुआत के लिए अच्छा समय है, यात्रा का योग बन सकता है या उसकी योजना बनेगी। मन में उत्साह रहेगा, किसी की मदद करने का अवसर मिले तो जरूर कीजिए। शुभ समाचार मिल सकता है। लकी नंबर है आज आपका 4।
0: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है, घर और काम के बीच संतुलन बनाए रखें। किसी पुराने परिचित से मुलाकात हो सकती है, मन को शांत रखें। आज आनंददायक रहेगा एंड शाम के बारे में बात कर रहे हैं, शाम बहुत ही आनंददायक रहेगी। वेल लकी नंबर है आज आपका 8।
0: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज नया सीखने का अवसर मिलेगा, किसी प्रिय व्यक्ति से बातचीत मन हल्का कर देगी। जल्दबाजी से बचे और सोच समझ कर आगे बढ़िए, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, दिन शुभ रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 11।
0: पाइसेस मीन राशि।
1: आज मन में सुकून और संतोष रहेगा, रुके हुए छोटे काम पूरे हो सकते हैं। अपनों के साथ बताया समय खुशी देगा और अपनी सेहत और आराम का ध्यान रखें। पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लकी नंबर है आज आपका 7। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे। चलिए रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ रविवार।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio.

0: subscribe to Radio Misty.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Musti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: A very good morning, aap sabhi ko suprabhat. Ghade milate chaliye, subah ki theek hai, 6 baj rahe hai. समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अभी के साथ हैं। संध्या नमस्कार आपको, अभी
6: नमस्कार या श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। प्रथम संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी कल शाम को एसेशेल्स की उरान HM-48 से महाद्वीप पहुंचे। डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी के मेहमान हैं। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी का स्वागत उपराष्ट्रपति सेबास्टियन पिल्ले, राजदूत इयान मैडलेन और अन्य लोगों द्वारा किया गया। ये प्रधानमंत्री की सेशेल्स में दूसरी यात्रा है। इससे पहले वे अक्टूबर

0: 2025 में राष्ट्रपति एमिनी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आए थे। तब से मॉरिशस और सेशेल्स ने अपने सहयोग को एक नए स्तर पर पहुंचाया। खासकर मार्च में राष्ट्रीय दिवस के मौके पर सेशेल्स के राष्ट्रपति की मॉरिशस यात्रा के दौरान ओल्ड एज पेंशनर्स एसोसिएशन इस वर्ष अपने अस्तित्व के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर कल सैंपिया सामाजिक केंद्र में अपने सदस्यों को एकत्रित किया। इस संगठन के सदस्य जयराज महादुआ के अनुसार इस संस्था की शुरुआत 80 सदस्यों के साथ हुई थी, जबकि आज इनके सदस्यों की संख्या बढ़कर 1300 हो गई है। मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल भी इस समारोह में उपस्थित थे और उन्होंने देश के विकास में बुजुर्गों के योगदान की सराहना की और साथ ही साथ उनके अनुसार सीनियर सिटीजन संगठन मॉरिशस की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करते हैं। नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि गामा नाउजादिक का मानना है कि नर्सों के प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित कैंपस का निर्माण आज के समय की एक बड़ी आवश्यकता है। उनके अनुसार ये कदम नई पीढ़ी को तैयार करने और स्वास्थ्य प्रणाली की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने डॉक्टरों को सार्वजनिक क्षेत्र खासकर सरकारी अस्पतालों में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेहतर कार्य परिस्थितियां प्रदान करने के महत्व पर भी जोर दिया। ये प्रस्ताव ऐसे समय पर आया जब बजट 2026-2027 में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए 2220 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कराची शहर में कल शनिवार 27 जून की रात जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद गोलीबारी भी हुई। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग हो गए हैं घायल। खबरों के मुताबिक ये धमाका पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान रेंजर्स के दफ्तरों के पास हुआ। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह थोड़ी सी बारिश होगी खासकर पूर्व, दक्षिण तथा ऊंचे इलाके पर, जबकि दोपहर को थोड़े से बादल घेराएंगे और कुछ जगहों पर हल्की सी वर्षा होगी पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर। रात के दौरान पूर्व, दक्षिण और ऊंचे ढलानों पर बरसात होने का अनुमान है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी और समंदर खराब रहेगा, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय 6:45 बजे जबकि सूर्यास्त शाम के 5:40 पर।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti।
0: तो देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6:30 विस्तार के साथ आप प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आदाब।
3: Chillax with Radio Musti.
2: Your number one Bollywood radio station.

Chillax with Radio Musty. Once again, a very good morning. आप सभी को सुप्रभात. संडे की इस खूबसूरत सुबह में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी ही रिया और आप सुन रहे हैं द सेकंड आवर ऑफ चिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर. वेल, सुबह की बारिश आई होप अब थम चुकी है, लेकिन इसकी जो ताजगी है ना, अभी भी हवा में महसूस हो रही है. आसमान धीरे धीरे रोशन हो रहा है और संडे अपनी प्यारी सी रफ्तार पकड़ रहा है. अब समय है गानों में थोड़ा सा रंग बदलने का. अगले कुछ गाने होंगे एक प्यारा सा संगम, कुछ नए, कुछ मिक्स, ताकि हम उम्र और हर पसंद को मिले अपने धन. तो चाय का एक घूंट लीजिए, मुस्कुराइए और संडे को हमारे साथ और भी खूबसूरत बनाइए. चलिए हम शुरू करते हैं दिस ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग सिर्फ रेडियो मस्ती पर. आई होप कि आपका दिन बहुत अच्छे से कटे और अपनों के साथ आप खुद को पाए. वेल, अगर आप खुद को अकेला भी पाते हो, कोई बात नहीं, रेडियो मस्ती आपके साथ हमेशा 24/7 विद द बेस्ट ट्रैक्स. जैसे कि ये नेक्स्ट गाना जो हम खास चुनकर लाए हैं आप सभी के नाम.

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें।

0: You're listening to a Radio Masti.
1: अजय, don't mind, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनो।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए, कोई दुआ ना लगे। दवा भी काम ना आए, कोई दुआ ना लगे। मेरे खुदा, किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.
3: शान की आवाज में ये खूबसूरत गाना जाता है विक्रम बिपन के नाम, भाई विक्रम के नाम, और आपकी बहन हेमलता ने ये गाना डेडिकेट किया है। एंड यस, यहाँ पर संध्या है, लोग माउंटेन से एंड नाइट शिफ्ट में काम कर रही है मालिनी के साथ, सो डेडिकेटिंग गाना फॉर सभी के लिए आप गाना डेडिकेट कर रही है। थनेश्वर जी, आपकी प्यारी पत्नी है सुनीता एंड द होल डेविडोस परिवार, एंजॉय दिस वन।

अपने घर मिला लीजिए इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। रविवार 28 जून 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी कल शाम को एयरसेल्स की उड़ान H148 से महाद्वीप पहुंचे। डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती फेना रामगुलाम सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी के मेहमान हैं। ऑल एज पेंशनर्स एसोसिएशन इस वर्ष अपने अस्तित्व के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर कल सैंपिया सामाजिक केंद्र में अपने सदस्यों को एकत्रित

0: किया। मौके पर उपस्थित गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने देश के विकास में बुजुर्गों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दी श्रद्धांजलि। नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि गामा नाउजादिक का मानना है कि नर्सों की ट्रेनिंग के लिए एक समर्पित कैंपस का निर्माण आज के समय की एक बड़ी आवश्यकता है। बजट 2026-2027 में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की दिशा में 2220 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का है प्रावधान। और विदेशी स्तर पर पाकिस्तान के कराची शहर में कल शनिवार 27 जून की रात जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद गोलीबारी हुई। इस हमले में 4 लोगों की हो गई है मौत जबकि 3 लोग हो गए हैं घायल। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी कल शाम को एसेशेल्स की उड़ान HM-48 से माही द्वीप पहुंचे। डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना रामगुलाम सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी के मेहमान हैं। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी का स्वागत उपराष्ट्रपति सेबास्टियन पिल्ले, राजदूत इयान मैडलेन और अन्य लोगों द्वारा किया गया। ये प्रधानमंत्री की सेशेल्स में दूसरी यात्रा है। इससे पहले वे अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति एमिनी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आए थे। तब से मॉरिशस और सेशेल्स ने अपने सहयोग को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। खासकर मार्च में राष्ट्रीय दिवस के मौके पर सेशेल्स के राष्ट्रपति की मॉरिशस यात्रा के दौरान उस अवसर पर मास्केरेंस कॉन्टिनेंटल शेल्स के संयुक्त प्रबंधन क्षेत्र के सतत विकास पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के लोगों को जोड़ने वाले मजबूत रिश्तों पर भी जोर दिया गया। आज रविवार को मॉरिशस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कि इस समारोह के मुख्य मेहमान हैं, इसके अलावा अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ और चीनी व रूसी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मौजूद होंगे। सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का यह जश्न L'identité, nous destin, यानी कि हमारा लोग, हमारी पहचान, हमारा भाग्य जैसे विषय के तहत मनाया जा रहा है। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि ओल्ड एज पेंशनर्स एसोसिएशन इस वर्ष अपने अस्तित्व के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर कल सैंपिया सामाजिक केंद्र में अपने सदस्यों को एकत्रित किया। संगठन के सदस्य जयराज महादुवा के अनुसार इस संस्था की शुरुआत 80 सदस्यों के साथ हुई थी जबकि आज इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 1300 हो गई है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल भी इस समारोह में उपस्थित थे और उन्होंने देश के विकास में बुजुर्गों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके अनुसार सीनियर सिटीजन संगठन मॉरिशस की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करते हैं। हमारी सहयोगी अश्मिता बांटू ने जयराज महादुआ से बात की, उनको सुनते हैं। विवरण रजनी बेकर के साथ।
1: इन बुजुर्ग लोगों के लिए सक्रिय जीवन बदल गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई वर्षों तक काम करते रहे, अपने परिवार को संभालते रहे। ओल्ड एज पेंशनर्स एसोसिएशन में 1300 सदस्य हैं। 1974 में ये कायम हुआ। इसकी सीट सैपिया में है। वे सप्ताह के दिन रोज यहाँ मिलते हैं और योगा करते हैं, कुछ पेतांग खेलते हैं, क्विज भी करते हैं और धर्मों एवं संस्कृतियों पर भी बात की जाती है।
2: Je suis partie de la Commission nationale du sport féminin. Je me demande cours d'exercice. Faire d'exercice pour nos bannes aînées, c'est un plus, c'est une chose qui est bien motivant et nous trouve ça avec sourire.
3: Je me prends part devant une compétition qui est là ici, dans l'activité qu'il fait. Il détend tout en même temps pour passer un moment avec mes camarades, tout ça.
4: Nous, nous avons envie qu'il commence à troisième âge après qu'il tant d'années de passer dans notre enfance, dans notre jeunesse, etc. Il faudrait qu'ils restent bien.

0: Nous avons plusieurs activités, chanter, danse, yoga, scrabble.
1: राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने बुजुर्ग लोगों के समुदाय में व्याप्त एकजुटता की सराहना की।
2: C'est eux qui préservent bonne valeur et transmettent sa bonne valeur là à la nouvelle génération. Et moi pense que nous besoin rendre hommage à tout moment.
1: 50वीं वर्षगांठ के मौके पर वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों को सम्मानित किया गया। अलग-अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया।
3: जूनियर मंत्री धनेश्वर दामरी ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम ने ही सामाजिक सुरक्षा उपायों की शुरुआत की थी, विशेष रूप से बुजुर्गों के कल्याण के लिए। और जिस तरह से हमने इस बात की चर्चा की है सुर्खियों में कि नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि गाम नावजादे का मानना है कि नर्सों की ट्रेनिंग के लिए एक समर्पित कैंपस का निर्माण आज के समय की एक बड़ी आवश्यकता है। उनके अनुसार ये कदम नई पीढ़ी को तैयार करने और स्वास्थ्य प्रणाली की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने डॉक्टरों को सार्वजनिक क्षेत्र खासकर सरकारी अस्पतालों में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेहतर कार्य परिस्थितियां प्रदान करने के महत्व पर भी ज्यादा बल दिया। ये प्रस्ताव ऐसे समय पर आए हैं जब बजट 2026-2027 में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए 2,220 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। उनके अनुसार सरकार ने उन कुछ क्षेत्रों के विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की भी घोषणा की है जहां विशेषज्ञता की कमी है। साथ ही चिकित्सा और नर्सिंग कर्मचारियों के लिए अधिक विशिष्ट प्रशिक्षण यानी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करने की भी बात कही है। हमारी सहयोगी शबनीज उजागिया ने राम नावजादिक से बात की, उनको सुनते हैं तीना बुदना का विवरण।
4: नर्सेस मर्सेस में काम करने के लिए लाइन में नहीं लगती है, ज्यादातर यूरोप या न्यूजीलैंड जाकर काम करना पसंद करती है। मैंने पहले भी कहा था कि एक पूरा स्कूल ऑफ नर्सिंग कैंपस बनाना चाहिए जहां सभी जरूरी फैकल्टीज हो और शुरुआत से ही नर्स को ट्रेनिंग दी जा सके। क्या एक डॉक्टर का वेतन किसी सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव से कम नहीं होना चाहिए? हम डॉक्टरों को उनके मौजूदा सैलरी स्केल में बांध कर नहीं रख सकते। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक अलग हेल्थ कमीशन बनानी चाहिए। आज एक बच्चा डॉक्टर बनने के लिए लाखों रुपए खर्च करता है और फिर सिर्फ 50,000 या 60,000 की नौकरी के लिए पब्लिक सर्विस में आए, ये आकर्षक नहीं है। नर्सेस को एक ही समय में लगभग 50 मरीजों की देखभाल करनी पड़ती है, वहीं पुराने उपकरण और पुराने बिस्तर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कई एरिया सेंटरों में डॉक्टर सिर्फ आधे दिन के लिए आते हैं, इसलिए ट्रेनिंग और व्यवस्था दोनों में सुधार की जरूरत है। मैं मंत्री अनिल बेचू से अनुरोध करता हूं कि एक स्कूल ऑफ नर्सिंग कैंपस स्थापित किया जाए, डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में काम करने के लिए प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव दिए जाए और एक अलग हेल्थ कमीशन बनाई जाए जिसमें बेहतर सैलरी स्ट्रक्चर हो ताकि अधिक डॉक्टर पब्लिक सर्विस में शामिल होने के लिए प्रेरित हो।
5: फिर एन कैंपस स्कूल ऑफ नर्सिंग दिन बन इंसेंटिव बन डॉक्टर पूरा डाल लोपिटल फिर कमिशन ला सांते कि सोला पेई एन लुट ला पेई कि अटिरे प्लूरेंट डाल ले सर्विस पब्लिक।
3: बजट 2026-2027 के तहत सरकार प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक स्पेशलाइज्ड अर्ली इंटरवेंशन यूनिट बनाने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य है उन बच्चों की सहायता को मजबूत करना जिन्हें अपने विकास में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द इंक्लूजन स्टेशन नामक एक मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट स्ट्रक्चर की निदेशिका और स्पीच थेरापिस्ट नाजिया अब्बासाकोर के अनुसार शुरुआत में ही हस्तक्षेप करने से बच्चे की प्रगति को बेहतर ढंग से सहारा दिया जा सकता है। हमारी सहयोगी अंजलि सिरतन फूलचंद ने उनसे बात की, विवरण अदिति अवतार का।
6: The Inclusion Station की निदेशिका नाजा बसाकू कहती हैं एक अर्ली स्क्रीनिंग बच्चे की संपूर्ण

0: कल्याण के लिए सही होता है, बच्चे का बेहतर विकास होता है, उसका उचित समावेश होता है, परिवार को जरूरी समर्थन और मदद मिल सकती है तथा शिक्षक परिवार के साथ मिलकर उन्हें पेशेवर सहायता दे सकेंगे ताकि उचित उपकरणों के इस्तेमाल से उन्हें फायदा हो।
1: बजट में स्पेशल एजुकेशन नीड संस्थानों

0: यह एक ऐसी सहायता प्रणाली है जो न केवल बच्चे के विकास पर बल्कि उनके परिवारों और शिक्षकों पर भी बेहद सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। बजट 2026-2027 में अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म बीमा पर प्रस्तावित 5% टैक्स से मेडिकल इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा को बाहर रखा जाना चाहिए। इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के महासचिव वशिष रामकलावन ने यह मांग की है। वे शुक्रवार 26 जून को बजट के उपायों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए मीडिया के सामने आए थे। उनका मानना है कि इस टैक्स से मॉरिशस के नागरिकों में स्वास्थ्य बीमा लेने के प्रति उत्साह कम होने का खतरा है। उनके अनुसार ऐसे समय में जब स्वास्थ्य संबंधी खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, यह बेहद जरूरी है कि आबादी को खुद को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, न कि एक नया टैक्स लगाकर बीमा की लागत को और बढ़ाया जाए। टीना बुदना।
1: Mais deuxième côté, concernant la santé, il y a des affaires vraiment délicates qui peuvent demander une réforme fondamentale.
2: मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर और अधिक चर्चा की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है और इसमें बुनियादी सुधार की आवश्यकता है। मैंने पहले भी समझाया था कि पेंशन के बाद अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए तो वो स्वास्थ्य है। इस पर बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। इसके लिए उचित फंडिंग होनी चाहिए। ये हमें सीधे कैश के रूप में नजर नहीं आती बल्कि सेवाओं के रूप में मिलती है। आज जो 5% की बात हो रही है उसे स्वास्थ्य पर लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि ये विरोधाभासी होगा, यानी कंट्राडिक्शन। एक ही उत्पाद पर एक तरफ टैक्स इंसेंटिव देना और दूसरी तरफ उसी पर टैक्स लेना बिल्कुल उचित नहीं है।
0: देश और दुनिया भर में संत कबीर की जयंती श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। उनका प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है। सत्य, समानता, प्रेम और मानवता का संदेश देने वाले संत सतगुरु कबीर साहब की शिक्षाएं आज भी समाज को नई दिशा देती हैं। इस अवसर पर विभिन्न संस्थानों पर भजन, सत्संग और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महंत आचार्य सर्वेश्वर दास हमें कबीर सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य दिवस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं।
3: श्री सदगुरुवे नमः। सदगुरु कबीर साहब का इस वर्ष हम सभी कबीरपंथी भाई बहन 628वां प्राकट्य महामहोत्सव मना रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य के बारे में एक प्रसिद्ध साखी है। 1455 साल गए चंद्रबार एक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भये। इसके अनुसार विक्रम संवत 1455 तदनुसार ईस्वी सन 1398 को 628 वर्ष पूर्व भारत उत्तर प्रदेश वाराणसी, जिसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ के लहर तालाब में एक बृहद कमल पुष्प पर सदगुरु कबीर साहब का अवतरण हुआ था। उनकी वाणियों में सदगुरु कबीर साहब ने कही कि सब घट मेरा साइया सोनी से जन कोय, बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट होय। अर्थात परमात्मा हर जगह है, लेकिन हम अपनी साधना से उसे प्रकट कर सकते हैं। इसी प्रकार वे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के जीवन में अहंकार है, वो परमात्मा का आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, और इसके लिए आवश्यक है उसे अहंकार रहित होना। क्योंकि वे कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सकल अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ज्ञान का दीपक जब अंतर में जलता है तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जीवन में प्रेम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वाणी में भी प्रेम होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। इसी प्रकार जिसके जीवन में प्रेम है उसे सदगुरु कबीर साहब पंडित मानते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। हमारे जितने भी भाई बहन हैं इस देश में, सभी को सदगुरु कबीर साहब का यह प्रागट्य महामहोत्सव मंगलमय हो। और सबके लिए विकास का मार्ग प्रशस्त हो, ये सदगुरु से प्रार्थना करते हैं। जय सत्यनाम।

विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कराची शहर में कल शनिवार को 27 जून की रात जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद गोलीबारी भी हुई। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। खबरों के मुताबिक ये धमाका पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान रेंजर्स के दफ्तरों के पास हुआ। अधिकारियों ने तुरंत धमाके की वजह या किसी के हताहत होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। कराची के गुलिस्तान जौहर इलाके में ये धमाका और उसके बाद गोलीबारी की खबर मिलने पर पुलिस और बचाव दल घटना स्थल पर पहुंचे। अमेरिका और ईरान के बीच 18 जून को हुए अंतरिम युद्ध विराम समझौते के केवल 10 दिन बाद ही तनाव फिर खुलकर सामने आ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने एक व्यापारिक जहाज पर कथित ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों और तटीय रेडर केंद्रों पर हवाई हमले किए। इस सप्ताह आए 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद बेहाल वेनेजुएला के लोग और बचाव दल बचे हुए लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। सरकार ने बताया कि काराकास और आसपास के इलाकों में भूकंप में भारी तबाही के बाद 172 लोग फंसे हुए हैं, 920 लोगों की मौत हो गई है और 3,360 लोग घायल हो गए हैं। 50,000 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है।

और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा अगले 24 घंटों के लिए। पूर्वानुमान, आज सुबह बादलों के घेराव के साथ थोड़ी सी बारिश होगी, खासकर पूर्व, दक्षिण और ऊंचे इलाके पर, जबकि दोपहर को थोड़े से बादल घेराएंगे, खासकर पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो पर, जबकि दिन के दौरान बरसात होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समंदर खराब रहेगा और ऊंची लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है। अगर तापमान के बारे में बात करें तो सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और आज सूर्योदय 7:45 बजे, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:40 पर।

चलिए आखिर में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी कल शाम को एएसआई शेल्सा की उड़ान HM-48 से माहिद्वीप पहुंचे। डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना रामगुलाम से शेल्सा की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी के मेहमान हैं। ओल्ड एज पेंशनर्स एसोसिएशन इस वर्ष अपने अस्तित्व के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर कल सैंपियर सामाजिक केंद्र में अपने सदस्यों को एकत्रित किया। मौके पर उपस्थित गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने देश के विकास में बुजुर्गों के योगदान की सराहना करते हुए दी उन लोगों को श्रद्धांजलि। नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि गम नौजादिक का मानना है कि नर्सों की ट्रेनिंग के लिए एक समर्पित कैंपस का निर्माण आज के समय की एक बड़ी आवश्यकता है।

0: बजट 2026-2027 में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की दिशा में 2220 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का किया गया है प्रावधान। और विदेश में पाकिस्तान के कराची शहर में कल शनिवार 27 जून की रात जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद गोलीबारी भी हुई। इस हमले में 4 लोगों की हो गई है मौत जबकि 3 लोग हो गए हैं घायल। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम कादर को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

ये शोक समाचार सुनते हैं। एवेनी गांधी स्टैनली रोजल में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की मिस बीबी अफरोज जुमन जिन्हें सब लोग अफरोज के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा कल रात के 9 बजे उन्हीं के मकान एवेन्यू गांधी स्टैनली रोजल से निकालकर दफना दिया गया है सैम ओंगते का कब्रिस्तान। फ्यूनरल यस्टरडे एट 9 PM मोसेलमो कुबन बोंबू में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री हेमराज मागो जिन्हें सब लोग कृष्ण के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर मोसेलमो कुबन बोंबू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोटाए सैंपिया बोंबू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM तमिल टेम्पल रोड गुडलैंड्स में 70 ईयर्स ओल्ड की मिस बीबी कुर्शीदा तुराबाली जिन्हें सब लोग कुर्शीदा के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके भाई जनाब अख्तर तुराबाली के मकान तमिल टेम्पल रोड गुडलैंड से निकालकर दफनाने के लिए बेलमो गुडलैंड्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM महात्मा गांधी रोड क्रेवक्यूए में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती प्रेमिला कालीचरण पैदाशिना मगाम राका और जिन्हें सब लोग पूनम के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके पति श्री नवीन कालीचरण के घर महात्मा गांधी रोड क्रेवक्यूए से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM रॉयल रोड ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट में 67 ईयर्स ओल्ड के श्री बिदानन रामेसो जिन्हें सब लोग मनन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके बेटे श्री मानव रामेसो के घर रॉयल ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून मोंटोशियो लेन सुरीनाम में 70 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जसवंती समन पैदाशी नाम जगन्नाथ और जिन्हें सब लोग प्रेमिला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके पति श्री कुमार समन के घर मोंटोशियो लेन सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM बाबूलाल लेन मोंडालबिया में 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंद्रावती बाबूलाल पैदाशी नाम गिरधारी और जिन्हें सब लोग इंदिरा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी

0: अर्थी आज दिन के एक बजे, आज दिन के एक बजे उन्हीं के घर बाबूलाल लेन मोदालबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेमायों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर डी 99 पुस ला रू ट्रेंगबो पोर्टविस में। नंबर 99 पुस गली ट्रेंगबो पोर्टलुई में 61 साल के श्री रमेश शिवपाल, जिन्हें सब लोग फ्रेया राज के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के, आज दोपहर के सवा दो बजे उनकी पत्नी श्रीमती माई शिवपाल के घर नंबर डी 99 पुस्कली थैंगबो पोतवी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाले दुप्रैत की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 2:15। ब्लॉक नंबर 24A सीते अनुष्का सिजिया मिल क्यूपिप में। ब्लॉक नंबर 24A सीते अनुष्का सिजिया मिल क्यूपिप में 70 साल की कुमारी कमलाबाई सुखदिन, जिन्हें सब लोग चित्रा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे, उन्हीं के घर ब्लॉक 24A सीते अनुष्का सिजिया मिल क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। रॉयल रोड पुज़िफ्लाक में, 79 साल की 79 की श्रीमती देवंती उच्चिगाडू, पैदाश नाम खुदी सिंह और जिन्हें सब लोग सबित के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सपहर के 3 बजे, उनके बेटे श्री राजेश उचिगाडू के घर राल रोड पुज़िफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मॉन लुबिन बेलमा किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 3 PM। गांधी रोड एनएस फ्लोरों में 65 साल की 65 की श्रीमती इंदिरा बंगारीगाडू, पैदाशी नाम रोबेरिया नाइको और जिन्हें सब लोग रेणुका के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे, उन्हीं के घर गांधी रोड एनएस फ्लोरों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: You're listening to RM2, a radio must-see.
3: Welcome to RM2.
4: Radio Musti.
5: North, South,
6: 103.5.
7: East, West,
8: 96.4.
9: Center,
8: 99.4.
3: RM2, Radio Musti.
4: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
10: Good morning. Subah ke 7 baje hai.
11: Timeless Tadka.
3: RM2.
11: Timeless Tadka.

0: Business तड़का
1: RM2।
2: नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का टाइमलेस तड़का में, जहां गाना सिर्फ एक मेलोडी नहीं बल्कि यादों की खूबसूरत कहानी होती है। 70s की मासूमियत, 80s का जोश और 90s का रोमांस। अगले दो घंटे बस दिल से दिल तक का सफर होगा, तो चाय या कॉफी लेकर बैठ जाइए और चलिए वक्त की सुई को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। इतने मनी 9 बजे तक आपके RM2 रेडियो मस्ती पर।

0: दोस्तों आजकल प्लेलिस्ट एक क्लिक में मिल जाती है, लेकिन पहले एक गाने सुनने के लिए इंतजार करना पड़ता था। रेडियो के पास बैठना, फेवरेट गाना की फरमाइश भेजना और नाम अनाउंस होने का एक्साइटमेंट, उस फीलिंग की बात अलग थी। तो आप भी मैसेज कर सकते हो हमें 5499124 पर, ताकि हम भी आपके डेडिकेशन चला सकें। अपने स्पेशल पर्सन को विश करना चाहते हैं, यू नो व्हाट टू डू, व्हाट्सएप अस ऑन 5499124 पर। इट्स योर आरएमटू रेडियो मस्ती।
1: Radio Musty. De moi. Et si on faisait les choses autrement? Du 26 juin au 9 juillet, chez Winners, retrouvez les grandes marques que vous aimez à des prix qui font vraiment du bien. Le pack de 6 bouteilles d'1.5 litre Vital Spring Water à 105 roupies et le kilo de lait entier en poudre Snowy à 222,95 roupies. Pas oublié, Excan to pay te gagne plus points Weave.
2: On est tous Winners!
1: RM2 Radio Musty.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: चलिए अभी के लिए सुनते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट्स आपसे विकास जी. गुड मॉर्निंग.
4: गुड मॉर्निंग नीलमणि एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस. फीफा वर्ल्ड कप 2026 एट इट्स बेस्ट. इंग्लैंड का बेड़ा पार हो गया. कप्तान हैरी केन ने वर्ल्ड कप में अपना 11वां गोल बनाकर गैरी लिनेकर का रिकॉर्ड तोड़ा. तो लास्ट 32 राउंड में द थ्री लायंस खेलेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के विरुद्ध, जिसका ये मेडन वर्ल्ड कप है. किंतु सबसे पहले लाइव मैचों की चर्चा करें जो इसी समय खेले जा रहे हैं. ग्रुप जे में इस समय अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया के बीच मैच ड्रॉ चल रहा है 2-2. अल्जीरिया के लिए बेलगाली और महरेज रियाद महरेज का एक एक गोल. उधर मार्को अनतोविच और साबित जे ऑन टारगेट. खेल का ये 70वां मिनट है और इसी ग्रुप में इस

समयी अर्जेंटीना 2-1 से आगे है। जॉर्डन ने अभी अभी एक गोल कम किया है। मूसा अल्तमारी ऑन टारगेट फॉर जॉर्डन। इससे पहले फर्स्ट हाफ में जोवानी लो सेल्सो और लुटारो मार्टिनेज ने अर्जेंटीना को आगे किया। ये दोनों मैच अभी अपने 70वें मिनट पर हैं, यानी अभी मुकाबला जारी है ग्रुप जे में। इससे पहले आज सुबह 3:30 बजे ग्रुप के में आज सुबह ही पुर्तगाल और कोलंबिया ने मैच ड्रॉ किया 0-0, जबकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर लास्ट 32 में कदम रखा और ऐसे में इतिहास भी रचा। पहली भागीदारी, पहला पार्टिसिपेशन और पहली बार ही लास्ट 32 राउंड में नॉकआउट स्टेज में पहुंच गए हैं। युआन वीसा ने 2 गोल स्कोर किए और कॉन्गो को 3-1 से जितवा दिया। अब इसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का मुकाबला इंग्लैंड के द 3 लायंस से होगा लास्ट 32 राउंड में। और ग्रुप एल में कल रात क्रोएशिया ने गाना को 2-1 से हराया, जीतकर क्रोएशिया क्वालिफाइड हो गया। तो इंग्लैंड की जीत हुई 2-0 से पनामा के विरुद्ध, पनामा 0-2। यदि ये गोल सेकंड हाफ में 62वें मिनट पर जूड बेलिंगम ने स्कोर किया और बेलिंगम का परफॉर्मेंस काबिल तारीफ सराहनीय रहा, तो हैरी केन ने 5 मिनट बाद 67वें मिनट पर एक और गोल दागकर इंग्लैंड को 2-0 से जितवा दिया। हालांकि ये जीत कन्विंसिंग नहीं थी, फिर भी जॉब डन। किंतु यदि खेल अच्छा नहीं रहा, इम्प्रूव्ड नहीं हुआ, तो इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है, ऐसा खुद इंग्लैंड के कोच ने कहा। पनामा 0-2, क्रोएशिया 2-1, लास्ट 32 राउंड अब आज से ही आरंभ हो रहा है। आज रात 11 बजे दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला सह मेजबान देश कनाडा से, सो पहला मैच नॉकआउट स्टेज में साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा। फिर कल से ब्राजील वर्सेस जापान, जर्मनी का मुकाबला पराग्वे से होगा। मंगलवार की रात नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को, गर्मा गर्म मुकाबला इन दो देशों के बीच, नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को। आइवरी कोस्ट खेलेगा नॉर्वे के विरुद्ध। फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से। फिर 1 जुलाई की रात मेक्सिको वर्सेस इक्वाडोर, इंग्लैंड का मुकाबला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, तो बेल्जियम खेलेगा सेनेगल के विरुद्ध। गुरुवार की रात 2 अन्य मैच, यूएसए वर्सेस बोस्निया एर्जेगोविना और स्पेन टक्कर लेगा मालूम पड़ता है ऑस्ट्रिया से। फिर शुक्रवार को पुर्तगाल वर्सेस क्रोएशिया, स्विट्जरलैंड खेलेगा हर हालत में ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ईरान से उसका मुकाबला होगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्त। और खबर यह है कि मोहम्मद सलाह भी डाउटफुल हैं, पिछले मैच में उसको चोट लगी थी। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्त, तो अर्जेंटीना खेलेगा केप वर्दे के विरुद्ध। और शनिवार रात्रि आखिरी मैच इस राउंड का, कोलंबिया का मुकाबला गाना से। शनिवार रात आखिरी मैच लास्ट 32 राउंड का, उसी रात लास्ट 16 राउंड भी आरंभ होने जा रहा है। सो इस बीच वर्ल्ड कप से एग्जिट होने के बाद, निकलने के बाद, स्कॉटलैंड के कोच स्टीव क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कोलैटरल डैमेज जारी है। एक नज़र एक बार फिर अभी खेले जा रहे मैचों पर। अल्जीरिया 2-2, जॉर्डन 1, अर्जेंटीना 2। बात करें अब क्रिकेट की, भारत और आयरलैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच आज बेलफास्ट में खेला जाएगा। पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रनों से हराकर चौंका दिया था, आज दूसरा मैच खेला जाएगा। तो फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के ऑस्ट्रियन ग्रां प्री में जॉर्ज रसेल आज ये रेस पोल पोजिशन से शुरू करेगा। अपने मैजिक लैप के बल पर वो शॉल लेक्लेयर को कल रात पार कर गया एन मौके पे। लेविस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर आया, यानी आज की रेस बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मर्सिडीज का किमी एंटोनेली अब लेविस हैमिल्टन से केवल, फेरारी के हैमिल्टन से केवल 41 पॉइंट्स आगे है।
क्षेत्रीय स्तर पर मॉरिशस की रेस्ट जूनो वेटरन फुटबॉल टीम सेशल्स में एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में भाग लेने गई है। सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के संदर्भ में ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। पहला मैच आज रविवार को रेस्ट जूनो वर्सेस फालें इन आइलैंड, फिर दूसरा मैच 1 जुलाई को खेला जाएगा रेस्ट जूनो और सेशल्स लेजेंड्स के बीच। द वन एंड ओनली गोल्डन स्टार्स फुटबॉल क्लब स्वर्गीय अजय भिखारी

0: के सम्मान में स्वांसी फुटबॉल क्लब के सहयोग से आज रविवार 28 जून की शाम एक फुटबॉल फेस्टिवल आयोजित कर रहा है। दिन के 2 बजे प्लेंडी पापाई के फुटबॉल मैदान में क्रिस्टल बीच रिजोर्ट होटल का मुकाबला स्वांसी फुटबॉल क्लब से है। एक पहला मैच खेला जाएगा, फिर गैरिसन ब्लू अजूए होटल वर्सेस सिलेक्शन प्लेंडी पापाई, ये दूसरा मैच आज के लिए निर्धारित है। सो एक बार फिर बता दें कि इस समय ग्रुप जे में वर्ल्ड कप के 2 मैच जारी हैं। 73वां मिनट चल रहा है, अल्जीरिया 2 ऑस्ट्रिया 2 जॉर्डन 1 अर्जेंटीना 2। देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: धन्यवाद विकास जी।
2: मेगा प्रोमो कोड क्वालिटी देखो, टाइल्स 30x30, मेगा डील लो टाइल्स 60x60, सीपे सेल्स लो ग्रानी टेक्वाट्स, विकासे लो लावो, ला लिनिया मोडेन प्रिसोक।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty. The Musty.
5: Ibakhat Bhajar ke 8 bajalba. सबको एक नमस्ते और वादा फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुना जा प्रधानमंत्री और उनकर पत्नी काल सांझ के एसेशल्स के उड़ान HM-48 के महाद्वीप पहुंच लंजा डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनकी उनकर पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम सेशल्स के स्वतंत्रता के 50वीं वर्षगांठ के समारोह खातिर राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी के मेहमान हवंजा सेशल्स के उपराष्ट्रपति सेबास्टियन पिले राजदूत इयान मैडलेन और अन्य महानुभाव प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनकर पत्नी के स्वागत कर लंजा आज दिमास के डॉक्टर नवीन राम गुलाम भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ चीनी और रूसी सरकार के प्रतिनिधि के संगे उपस्थित रहियंजा बजट 2026-2027 के तहत सरकार के बगल से प्राथमिक स्कूल में 3 से 5 बरिस के उम्र के लयका लोगन खातिर एगो स्पेशलाइज अर्ली इंटरवेंशन यूनिट कायम करे के योजना बनावल जाता एकर उद्देश्य उ लयकवन के सहायता के मजबूत करे के जे अपन विकास में कठिनाई के सामना करे लंजा नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि राम नावजादिक के अनुसार नर्स लोगन के ट्रेनिंग करे खातिर एगो समर्पित कैंपस बनावे के आज के बखत में बहुत ही जरूरी बाते एगो आवश्यकता बन गल बाते उनकर अनुसार ई कदम नवा पीढ़ी के तैयार करे के और स्वास्थ्य प्रणाली के बढ़ती जरूरत के पूरा करे खातिर महत्वपूर्ण बाते बजट 2026-2027 में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी लोगन की संख्या बढ़ावे खातिर 2220 स्वास्थ्य पेशेवर के भर्ती के प्रावधान बाते दूसर देश में पाकिस्तान के कराची शहर में काल सामदी के रात के कस के धमाका भल एकर बाद ताबड़तोड़ गोलीबारी भी होल जेमे 4 जना के मौत हो गल बाते और 3 आदमी के कस के घाव लग गल ई धमाका पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान रेंजर्स के दफ्तर के भेरी होल रहल और कल रात और आज फजरे फजरे होल फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में ग्रुप एल से इंग्लैंड पनामा के 2-0 से हरा दिलक क्रोएशिया भी गाना के 2-1 से हरा दिलक ग्रुप के में कोलंबिया पुर्तगाल से ड्रो खेलल कोंगो उज्बेकिस्तान के 3-1 से मात दिलक और अब ये ही अर्जेंटीना जोर्डन के खिलाफ खेलन और इसको रहल 3-1 और है जो मैच बाते अभी ही फिनी हो गल तो दूसर देने में अल्जीरिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच अभी ही फिनी हो गल और ओकर हालिया जो निस्को बाते उद्रो माने 3-3 बाते तो एक रवि संगे हमने की भोजपुरी समाचार समाभल ध्यान खातिर धन्यवाद नमस्ते और आदाब
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: गुड मॉर्निंग, 8:06 हुए हैं अभी के लिए. चलिए जानते हैं मौसम का हाल.
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
2: ओनली टू विनर्स.
3: आम हालत दक्षिण पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान. आज सुबह थोड़ी सी बारिश होगी, खासकर पूर्व, दक्षिण तथा ऊंचे इलाके पर, जबकि दोपहर को थोड़े से बादल घेराएंगे और कुछ जगहों पर हल्की सी वर्षा होगी पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर. रात के दौरान पूर्व, दक्षिण और ऊंचे ढलानों पर बरसात होने का अनुमान है. हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे

0: तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी और समंदर खराब रहेगा, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय 6:45 जबकि सूर्यास्त शाम के 5:40 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
3: Fin de mois. Et si on faisait les choses autrement? Du 26 juin au 9 juillet, chez Winners, retrouvez les grandes marques que vous aimez à des prix qui font vraiment du bien. Le pack de 6 bouteilles d'1.5 litres Vital Spring Water à 105 roupies et le kilo de lait entier en poudre Snowy à 222,95 roupies. Pas oublié, Excan to pay te gagne plus points Weave.
4: On est tous Winners!
1: RM2
2: Radio Musti.

0: US
1: 30 का RM2
2: हाय, कभी कभी गर्म चाय या कॉफी की प्याली हो जाए तो बस सुबह अच्छे से शुरू होती है। अगर आप अभी अभी उठे हो, गुड मॉर्निंग। 8:15 हुए हैं और आप सुन रहे हैं अपना चैनल स्तर का शो विद नर्मनी। एंड वैसे वाइब तो शुरू हो चुका है 7 बजे से, और अगर आपके प्लान्स हैं बहुत सारे लेकिन एनर्जी लेवल है लो सुबह सुबह, स्टे ट्यून्ड टू RM2 क्योंकि गाने आपके लिए ऐसे लेकर आने वाले हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाए। तो ये RM2 रेडियो मस्ती पर स्टे कनेक्टेड एंड 5499-1294 पर अपने डेडिकेशन आप भेज सकते हैं।
0: Timeless तड़का,
1: RM2
0: Timeless तड़का।

0: Bez Tarka.
1: RM2.
2: बजकर 20 मिनट होने को हैं वैसे हमारे कुछ लिसनर्स हैं अर्ली राइजेस फॉर संडे मॉर्निंग अभी हमारे साथ कनेक्टेड है मिलविल माता देन जो मांग रहे हैं प्यारा सा गाना अपनी गॉर्जियस वाइफी श्रुति के लिए और वो इस वक्त मस्ती मोड में है वाइब कर रहे हैं डांस कर रहे हैं घर पे ही तो हो जाए अगला गाना टू बोथ ऑफ यू एंड आल्सो हंस के लिए जो उनके साथ मस्ती में शामिल है हियर वी गो
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
0: टाइमलेस तड़का

0: जिंदगी का असली म्यूजिक तब बनता है जब मेहनत की बीट और उम्मीद की मेलोडी साथ चलती है। हर नया दिन एक नया स्वर है, आपकी सोच ही तय करती है कि उसे खुशियों का गाना बनाना है या फिर शिकायत की कहानी।
1: Avant tout défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.

0: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ
2: चलिए
1: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको.
2: रेडियो मस्ती के साथ
1: वर्ल्ड कप मैगजीन.
3: वर्ल्ड कप स्पेशल मैगजीन ग्रुप स्टेज का The End. इनमें से केवल 32 टीमें 32 टीम्स तैयार हैं मुक्केबाजी मतलब नॉकआउट राउंड के लिए. इनमें से कुछ टीमें पहली बार के लिए ग्रुप स्टेज पार कर पाई. कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए हिस्टोरिक क्वालिफिकेशन, योवान विसा का डबल, मायेले का एक गोल. कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का सामना अब इंग्लैंड से होगा. इंग्लैंड अपना ग्रुप टॉप कर गया पनामा को 2-0 से हरा के. सेकेंड हाफ में जूड बेलिंगहम और रिकॉर्ड मेकर हैरी केन का गोल इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाला रिकॉर्ड अब हैरी केन का हो गया. टोटल 11 गोल. पहले ये रिकॉर्ड गैरी लिनेकर के साथ था. पर फुटबॉल पंडितों का मानना है कि इंग्लैंड का परफॉर्मेंस बिलो पार था. इस तरह के फुटबॉल के साथ द थ्री लायंस ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे. इंग्लैंड के ग्रुप में से क्रोएशिया और गाना भी क्वालिफाई हुए. 2-1 से क्रोएशिया ने गाना को हराया पर दोनों क्वालिफाई. ग्रुप के में कोलंबिया ग्रुप टॉपर बना, पोर्टुगल दूसरे स्थान पे. इनके बीच मैच ड्रॉ गया 0-0. 25 वर्ल्ड कप मैचों में पहली बार कोलंबिया एक गोल स्कोर नहीं कर पाया. ग्रुप जे में लियोनेल मेसी ने फिर से स्कोर किया. अर्जेंटीना 3, जॉर्डन 1. बाकी गोल लुसेल्सो और लुतारो मार्टिनेज का रहा. इसी ग्रुप में से अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया के बीच मैच ड्रॉ 3-3, दोनों क्वालिफाई हुए. इस तरह नॉकआउट के लिए 32 टीम्स की लिस्ट बन गई है. फिक्स्चर्स भी तैयार हैं. आज रात से ही नॉकआउट राउंड शुरू. साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा.

0: ये आज रात 11 बजे, कल 9 बजे ब्राजील वर्सेस जापान, 11:30 बजे जर्मनी वर्सेस पाराग्वे, मंगलवार को सुबह 5 बजे नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को, फिर आइवरी कोस्ट नॉर्वे 9 बजे, फ्रांस स्वीडन 1 बजे। बाकी फिक्स्चर्स मेक्सिको इक्वाडोर, इंग्लैंड कोंगो, बेल्जियम सेनेगल, यूएसए वर्सेस बोस्निया, स्पेन खेलेगा ऑस्ट्रिया के खिलाफ, पोर्टुगल खेलेगा क्रोएशिया के खिलाफ, स्विट्जरलैंड वर्सेस अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्त, अर्जेंटीना का सामना केप वर्डे से होगा और कोलंबिया खेलेगा गाना के खिलाफ। इस बार अफ्रीका से रिकॉर्ड 9 टीमें क्वालिफाई हुई है नॉकआउट राउंड के लिए। सैटरडे 4 जुलाई से लास्ट 16 मतलब वीचेम दे फिनाल शुरू होंगे। और इजिप्त के लिए कप्तान मोहम्मद सलाह हैमस्ट्रिंग इंजुरी के कारण अगला मैच शायद नहीं खेल पाएगा। सो गेट रेडी फॉर द लास्ट 32। यहां से जो हारा गया घर और जो जीता क्वालिफाई हुआ अगले राउंड के लिए। मुक्केबाजी नॉकआउट राउंड इज ऑन। वर्ल्ड कप हमारे साथ रेडियो हो या टीवी फॉलो करते रहिएगा।
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

Well, कहते हैं तब तक टाइमलेस तरका का मजा नहीं आता जब तक आशा भोसले जी पिया तू नहीं गा देती, तो इसलिए ये गाना चलाया हुआ खास आपके लिए। तो एक आंख मैसेजेस पर देते हैं, छोटी रेशना कनेक्टेड है सुबह से लेकिन उनका मैसेज अनफॉर्चुनेटली डिलीटेड हो गया। कोई बात नहीं, आप फिर से मैसेज कर सकते हो हमें। एंड प्लेंडे गोश से वी हैव रिश्मा रामजीतन जी, नेक्स्ट गाना मांग रही है अपने हस्बैंड विराज, मम्मी सीता, पापा दीपा, रति और जशवी, बोबी, किशन, सचिन एंड लविश के लिए। रेखा जी ने भी मैसेज भेजा है, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, और ये भी लिखा है कि आपका प्रोग्राम वेरी नाइस है, नेक्स्ट सॉन्ग अपने लिए और अपने बेटे अंश के लिए, हैव अ नाइस डे भी विश किया है आप सभी को। आपको भी डियरी हैव अ नाइस डे। सैंपिया से वी हैव राजीव जी जो मांग रहे हैं गाना स्पेशली अपनी फ्रेंड नीतू के लिए, विशिंग हर सेफ हेल्थ एंड लोड्स ऑफ हैप्पीनेस। तो ऐसे ही हमारे साथ स्टे कनेक्टेड, टाइमलेस तड़का का सफर जारी है 9 बजे तक, तो आपके लिए गाना जरूर चलाएंगे। अभी के लिए मैं इजाज़त लेती हूँ आपसे, होप यू हैड ए ग्रेट ग्रेट मॉर्निंग। तो संडे को बनाते रहे फंडे RM2 रेडियो मस्ती के साथ में ही।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक सुबह के 9 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी से। अभी आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी कल शाम को एयर सेशल्स की उड़ान HM-48 से माही द्वीप पहुंचे। डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी के मेहमान हैं। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी का स्वागत उपराष्ट्रपति सेबास्टियन पिले, राजदूत यान मैडलेन और अन्य लोगों द्वारा किया गया। ये प्रधानमंत्री की सेशेल्स में दूसरी यात्रा है और मस्कारेंस कॉन्टिनेंटल शेल्स के संयुक्त प्रबंधन के क्षेत्र के सतत विकास में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देशों के लोगों को जोड़ने वाले मजबूत रिश्तों पर भी जोर दिया गया। नर्सिंग एसोसिएशन की प्रतिनिधि गामा नावजादिक का मानना है कि नर्सों के ट्रेनिंग के लिए एक समर्पित कैंपस का निर्माण आज के समय में बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। उनके अनुसार ये कदम नई पीढ़ी को तैयार करने और स्वास्थ्य प्रणाली की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रस्ताव ऐसे समय में आए हैं जब बजट 2026-2027 में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए 2,220 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। बजट 2026-2027 के तहत सरकार प्राथमिक स्कूलों में 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक स्पेशलाइज्ड अर्ली इंटरवेंशन यूनिट बनाने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य है उन बच्चों की सहायता को मजबूत करना जिन्हें अपने विकास में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द इंक्लूजन स्टेशन नामक एक मल्टीडिसिप्लिनरी सपोर्ट स्ट्रक्चर की निदेशक और स्पीच थेरापिस्ट नज़ा के अनुसार शुरुआत में ही हस्तक्षेप करने से बच्चों की प्रगति को बेहतर ढंग से सहारा जा सकता है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कराची शहर में कल शाम को 27 जून की रात खासकर जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद गोलीबारी भी हुई। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। 28 जून को यानी कि आज ग्रुप जे, के और एल के अंतिम मैचों के साथ ग्रुप स्टेज का सफर समाप्त हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं

0: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का, जहां पर इंग्लैंड, अर्जेंटीना, क्रोएशिया जैसी बड़ी टीमों ने अपने मुकाबले जीते, जबकि पुर्तगाल और कोलंबिया का हाई प्रोफाइल मैच रहा। जूड बेलिंगहैम के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने 2-0 से जीत दर्ज की। हैरी केन ने भी एक गोल दागकर इंग्लैंड के लिए नया इतिहास रचा। क्रोएशिया ने गाना को 2-1 से हराया। निकोला व्लासिक ने अंतिम समय में निर्णायक गोल किया। उधर मियामी में खेला गया एक रोमांचक मुकाबला, यानी कि कोलंबिया बनाम पुर्तगाल, जहां पर ड्रॉ रहा 0-0। कोलंबिया ग्रुप में शीर्ष पर रहा और पुर्तगाल दूसरे स्थान पर रहकर राउंड ऑफ 32 में पहुंचा। उधर कोंगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर नॉकआउट स्टेज के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। और जहां तक अल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रिया की बात है, तो इस दौड़ में सबसे रोमांचक मैच रहा। रियाद महरेज के 2 गोलों की मदद से अल्जीरिया ने ऑस्ट्रिया के साथ 3-3 से थ्रिलर ड्रॉ खेला। उधर डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से आसानी से हराकर ग्रुप में पहला स्थान हासिल किया। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। थोड़ी देर में शोक समाचार। विक्टोरिया रोड थ्रू द डुस में 76 साल के 76 years old के श्री प्रेमचंद सिधियान, जिन्हें सब लोग बुलेल के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उन्हीं के घर विक्टोरिया रोड थोदुडुस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंडेमास का कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3:30 PM बाबूलाल लेन मोंडालबिया में 67 साल की 67 years old की श्रीमती इंद्रावती बाबूलाल, पैदाशिया नाम गिरधारी और जिन्हें इंदिरा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के घर बाबूलाल लेन मोंडालबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 1 PM और एवेन्यू इरोंडेल लापे पीटों में 48 साल की 48 years old की श्रीमती मालिनी मुकेन, पैदाशी नाम चेंगन और जिन्हें सब लोग वानिदा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उनके पति श्री मगावेन मुकेन के घर एवेन्यू इरोंडेल लापे पीटों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीटों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टूडे एट 3 PM इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: Yo.
1: हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लगता है ठंड ने बस हमारा घर ढूंढ लिया है। रात को हालत ऐसी होती है कि दो ब्लैंकेट्स भी कम लगते हैं। और अब करिए ब्लैंकेट को दूर। मैं आ गई हूँ आपका मूड बनाने के लिए आपके ही प्रोग्राम वॉली ब्रंच में। अगर आपकी कोई डेडिकेशन है या कोई मैसेजेस है तो भेजिए 5491294 पर। तो उठना तो बनता है भैया, अब उठ भी जाओ। सोने का नहीं, काम पे जाना है, बहुत सारे काम करने। इंजॉय कीजिए आपके गाने।
2: Body Brunch, RM2, Radio Masti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 9:25 हो चुके हैं। फुटबॉल लवर्स, क्या बात है। चलो भैया आपको अपडेट देते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का एक्साइटमेंट मुझे लगता है और बढ़ता जा रहा है। आज फर्स्ट स्टेज के आखिरी दो मैचेस सुबह 8 बजे फिनिश हुए। अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया और इसमें मेस्सी का एक और शानदार गोल देखने को मिला। दूसरी तरफ अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया के बीच मुकाबला हुआ जहां पे 3-3 ड्रॉ रहा, यानी अब अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया तीनों ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब अगर आगे नजर डालते हैं तो 3 जुलाई को अर्जेंटीना का मुकाबला होगा, केप वर्दे से होगा, वहीं ऑस्ट्रिया खेलेगा स्पेन के खिलाफ और अल्जीरिया भिड़ेगा स्विट्जरलैंड से। और हाँ, एक और अपडेट, कल रात इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराया, नॉकआउट स्टेज में टॉप पोजीशन से एंट्री कर ली है। अब 1 जुलाई को इसका मुकाबला होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से। कांगो के लिए अभी एक कहते हैं ऐतिहासिक क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन और डायरेक्ट क्वालिफिकेशन, क्या बात है। आप तैयार हो जाइए क्योंकि आज रात से फीफा वर्ल्ड कप का नॉकआउट राउंड शुरू हो रहा है। पहला मैच आज रात खेला जाएगा 11 बजे, कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका, और बाकी सभी मुकाबले पूरे वीक खेले जाएंगे। तो बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। मैं यहीं पर हूँ आपके साथ पूनम, इंजॉय कीजिए अपडेट के साथ आपका बॉली ब्रांच।
0: Body Branch RM2 Radio Masti।

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती
1: 9:36 हो चुके हैं और कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप का मजा तो अलग ही आ रहा है। रात को मैचेस देखो, सुबह उठकर फिर से एक दूसरे से पूछो, अरे भाई बताओ ना कल क्या चल रहा है, कल कौन जीता कौन हारा, ये सब कुछ चलता ही जा रहा है। पर सच बताऊं, कल से ऑफिस में कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं और सब पूछ रहे हैं, अरे भाई MBC Play 1.0 कैसे डाउनलोड करना है, क्या हुआ भाई, इतने दिनों से हम बोल रहे थे डाउनलोड कर लो पर किसी ने नहीं किया, पर एकदम से अचानक से हो गया। पर अगर आपको भी डाउनलोड तो बस आप डाउनलोड कीजिए एमबीसी प्ले अपने प्ले स्टोर पे जाके, और अगर कोई भी टेंशन आती है, कोई मुश्किल आती है, तो आप एमबीसी मोका पे कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे बहुत इजी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप देखने में एक्साइटमेंट तो मुझे लगता है अब बढ़ रही है, सबको लग रहा है कि हाँ भाई ये मैचेस मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारे जो लड़के हैं ना, यंगस्टर्स हैं या अंकल वगैरह भी हैं, वो सारे कह रहे हैं कि भैया ये बहुत ही है फीफा वर्ल्ड कप, एक ही बात तो आधे चार साल के बाद, तो इंजॉय कीजिए और गानों के साथ में मस्ती कीजिए। मुझे मैसेज भेजिए 549912 94 पर।
0: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: RM2 Radio Musti.
1: Your daily horoscope.
0: RM2 Radio Musti.
2: नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ पूनम और ये है आपका ही फेवरेट चैनल जिसे कहते हैं RM2 रेडियो मस्ती और ये टाइम है आपके फेवरेट राशिफल का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं
3: एरीज मेष राशि।
2: आज काम में अच्छी रफ्तार बनी रहेगी, अपनों के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, प्यार और मेहनत दोनों साथ देंगे, दिन खुशियों भरा रहेगा। लकी कलर बनेगा रेड, लकी नंबर है 9।
3: टॉरस वृषभ राशि।
2: आज धैर्य आपका साथ देगा, काम आराम अच्छे से होने वाले हैं। अगर आपको काम में थोड़ा सा आराम चाहिए तो आज सुबह थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, किसी अपने का साथ दिल खुश कर सकता है और आपका दिन बना सकता है, दिन सुकून भरा रहेगा। लकी कलर बनेगा ग्रीन, लकी नंबर है 6।
3: जेमिनी मिथुन राशि।
2: आज आपकी बातें असर छोड़ेंगी, काम में समझ आएगी, प्यार में कहीं कोई बात करते करते आपका दिल जीत सकता है, तो ध्यान रखिएगा अपना, दिल कहीं आज खो ना बैठे, दिन अच्छा गुजरेगा और आपका लकी कलर बनेगा येलो, लकी नंबर है 5।
3: कैंसर कर्क राशि।
2: आज केयरिंग स्वभाव आपको अच्छा लगेगा, काम और रिश्तों में तालमेल रहेगी, अपनों के साथ में आपको हिम्मत भी मिलेगी और आपका वो लोग साथ भी देंगे, दिन प्यार भरा रहेगा और अच्छे से सब आपसे मिलेंगे जुलेंगे, आपसे बात करेंगे, तो आपका लकी कलर बनने वाला है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
3: लियो सिंह राशि।
2: आज आपका अंदाज सबको का ध्यान खींचेगा, काम में तारीफ मिल सकती है, खुद पर अपना भरोसा बनाए रखें, दिन शानदार रहने वाला है, लकी कलर है गोल्ड।

0: गार्डन लकी नंबर है 1।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आज प्लानिंग बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा, काम आसानी से पूरे होंगे, खुद को थकाइए मत, बस अपना ध्यान रखिए, थोड़ा सा अच्छा सा खाइए जिससे आपको एनर्जी मिले, दिन बढ़िया रहने वाला है। ओवरऑल लकी कलर बनेगा स्काई ब्लू, लकी नंबर है 7।
1: लीब्रा तुला राशि,
0: आज संतुलन आपका ताकत बनेगा, काम और रिश्ते दोनों अच्छे चलेंगे, प्यार बांटिए, प्यार मिलेगा, दिन खुशनुमा रहने वाला है। आपकी थोड़ी सी एक्साइटमेंट तभी बढ़ सकती है अगर आप कहीं थोड़ा सा बाहर घूमने जाएं किसी अपनों के साथ, लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 4।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज आपका ध्यान मजबूत रहेगा, काम में अच्छी बढ़त दिखेगी, दिन हल्का रहेगा, दिन अच्छा रहेगा, लकी कलर है मेहरून, लकी नंबर है 8।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज जोश अच्छा रहने वाला है, काम पूरा कर खुशी से आप पल बिताएंगे, हंसी मजाक मूड अच्छा रहेगा, आपके परिवार आपका पूरा साथ देने वाला है, दिन ओवरऑल मजेदार रहने वाला है, लकी कलर है पर्पल, लकी नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज मेहनत रंग ला सकती है, काम में अच्छी पहचान बनेगी, आराम भी मिलेगा आपको और आपको संतोष भी आखिरी में रात को मिल सकता है, आपको लगेगा कि आपने कुछ प्रोडक्टिव आज किया है, तो लकी कलर है ब्राउन, लकी नंबर है 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज नए विचार आएंगे, आपकी सोच आपको खुद से प्रभावित करेगी, अपनों का प्यार और हौसला मिलेगा आपको, दिन रोचक रहेगा, आपको एहसास होगा जिस जिसने आपकी इतने सालों तक कहते हैं ना कि केयर किया है, ध्यान दिया है आप पे, और आज वो टाइम है आ गया है, तो आपको बिल्कुल उस टाइम को गंवाना नहीं है, अपने लोगों के साथ खड़े रहिए जैसे वो आपके साथ आपके किसी सुख दुख के टाइम में खड़े हुए थे, लकी कलर बनेगा ब्लू, लकी नंबर है 11।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज मन शांत रहेगा, काम भी अच्छे से होगा, अपने लोगों के साथ खुशी मिलेगी, दिन सुंदर रहेगा, लकी कलर है सी ग्रीन, लकी नंबर है 12। तो ये था आज का आपका राशिफल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए गाने।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती,
3: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check सुबह के 10 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. अभी से अभी आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. सबसे पहले शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के साथ. 28 जून यानी कि आज ग्रुप जे के और एल के अंतिम मैचों के साथ ग्रुप स्टेज का सफर समाप्त हो गया. इंग्लैंड, अर्जेंटीना और क्रोएशिया जैसी बड़ी टीमों ने अपने मुकाबले जीते, जबकि पुर्तगाल और कोलंबिया का हाई प्रोफाइल मैच ड्रॉ रहा. जूड बेलिंगम के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड और पनामा के बीच हुए मैच में इंग्लैंड ने 2-0 से जीत दर्ज की है. हैरी केन ने भी एक गोल दागकर इंग्लैंड के लिए नया इतिहास रचा. क्रोएशिया ने गाना को 2-1 से हराया. निकोला व्लासिक ने अंतिम समय में निर्णायक गोल किया. हार के बावजूद गाना भी अगले दौर में पहुंच गया. मियामी में खेला गया ये रोमांचक मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा, यानी कि कोलंबिया ग्रुप में शीर्ष पर रहा और पुर्तगाल दूसरे स्थान पर रहकर राउंड ऑफ 32 में पहुंचा. उधर कोंगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर नॉकआउट स्टेज के लिए अपनी जगह पक्की कर ली. सबसे रोमांचक मैच में रियाद महरेज ने 2 गोलों की मदद से अल्जीरिया ने ऑस्ट्रिया के साथ 3-3 से थ्रिलर ड्रॉ खेला, जबकि डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से आसानी से हराकर ग्रुप में अपना पहला स्थान हासिल किया. प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी कल शाम को एसएशएल्स की उड़ान HM-48 से महाद्वीप पहुंचे. डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना रामगुलाम सेशेल की स्वतंत्रता की 85 वर्षगांठ के समारोह के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी के मेहमान हैं. प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी का स्वागत उपराष्ट्रपति सेबास्टियन पिले, राजदूत यान मैडलेन और अन्य महानुभावों द्वारा किया गया. ये प्रधानमंत्री की सेशल्स में दूसरी यात्रा है. इससे पहले वे अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति एमिनी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आए थे. तब से मॉरिशस और सेशल्स ने अपने सहयोग को एक नए स्तर पर पहुंचाया, खासकर मार्च में राष्ट्रीय दिवस के मौके पर सेशल्स के राष्ट्रपति की मॉरिशस यात्रा के दौरान. बजट 2026-2027 में अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म बीमा पर प्रस्तावित 5% टैक्स से मेडिकल इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा को बाहर रखा जाना चाहिए. इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के महासचिव वशिष खाम कलावन ने ये मांग की है. वे शुक्रवार 26 जून को बजट के उपायों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेस को बुलाया था. उनका मानना है कि इस टैक्स

0: से मॉरिशस के नागरिकों में स्वास्थ्य बीमा लेने के प्रति उत्साह कम होने का खतरा है। उनके अनुसार इसी समय में जब स्वास्थ्य संबंधी खर्च लगातार बढ़ रही है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच 18 जून को हुए अंतरिम युद्ध विराम समझौते के केवल 10 दिन बाद ही तनाव फिर खोलकर सामने आ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक व्यापारिक जहाज पर कथित ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों और तटीय रेडर केंद्रों पर हवाई हमले किए। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। थोड़ी देर में शोक समाचार। मोसेलमो ओबन बोम्बुमे 76 साल के 76 years old के श्री हेमराज मौगा जिन्हें सब लोग कृष्ण के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन की 11 बजे उन्हीं के घर मोसेलमो ओबन बोम्बु से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताएं सैंपिया बोम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। तमिल टेंपल रोड गुडलैंड्स में 70 साल की 70 इयर्स ओल्ड की मिस बीबी कुर्शीदा तुगाबाली जिन्हें सब लोग कुर्शीदा के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके भाई जनाब अख्तर तुगाबाली के मकान तमिल टेंपल रोड गुडलैंड से निकालकर दफनाने के लिए बेलमो गुडलैंड्स का कब्रिस्तान ले जा जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। महात्मा गांधी रोड क्रेवक्यू में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती प्रेमिला कालीचरण पैदाशी नाम रामरा का और जिन्हें सब लोग पूनम के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके पति श्री नवीन कालीचरण के घर महात्मा गांधी रोड खैवकिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 10:09 हो चुके हैं और आपके मैसेजेस का टाइम हो गया है क्योंकि बहुत देर से सारे कह रहे हैं प्लीज़ हमारा मैसेज पढ़ दो। चलिए जी, हम भी आपके मैसेजेस पढ़ने को उतने ही उतारू होते हैं जैसे आपका एहसास होता है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय यलेश जी, जो कि इंजॉय कर रहे हैं गाने और सभी को कह रहे हैं गुड मॉर्निंग और कह रहे हैं ठंड हो गई है तो सब अपना अपना ख्याल रखें। कुमार देवी चरण जी जुड़े हुए हैं अपने पापा श्याम देवी चरण जी के साथ और कह रहे हैं RM2 रेडियो मस्ती हो और साथ में पापा और साथ में गिटार हो तो और कुछ नहीं चाहिए, संडे ऐसे ही ऐसा बन जाता है। तो थैंक यू कुमार देवी चरण जी, आपका एंजॉय कीजिए अपने गानों को। ललिता जीतन जी साथ दे रही हैं और कह रही हैं नीले बादलों के नीचे और नीले पानी के पास सच में मॉरिशस ऐसा लगता है जैसे हेवन है। तो और कहते हैं कि ये हेवन सिर्फ लगता नहीं है क्योंकि हम सारे जने इतना इंजॉय करते हैं चाहे सैटरडे हो संडे हो और पूरा वीक काम करने के बाद ये जो समुद्र है हमें अट्रैक्ट करता है। तो थैंक यू, आपने इतने प्यारे प्यारे से मैसेजेस भेजे और इस हमारे प्यारे से मॉरिशस को हेवन का नाम तो सबने दे ही है और आपने भी तो आज कंफर्म कर ही दिया। तो ललिता जीतन जी आप इंजॉय कीजिए अपने गाने। साथ में अनीता जी फ्लिकॉन फ्लाग से जुड़ी हुई हैं साथ और वो भी यही कह रही हैं सामने है मेरे समुद्र और मैं इंजॉय कर रही हूँ इन प्यारे से गानों को। कह रहे हैं कि मस्ती वाले गाने जब चलते हैं तो हमारे भी दिल करता है, घर के काम अपने आप हो जाते हैं और साथ में इंजॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल संडे को। तो अपने परिवार के साथ इंजॉय कीजिए, ये है आपका बॉलीवुड ब्रंच।
0: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
3: Shapes, allez, allez, allez. Shapes, ça c'est l'Ubispi. Cheddar, chicken crimpy, nacho cheese, barbecue, pizza, tout ça vient et n'a pour faire vous content. En Shapes, tout programme Djibout.
4: Shapes, shapes, shapes, allez, allez, allez. Shapes, shapes, shapes, ça c'est l'Ubispi.
3: Shapes, ça l'Ubispi.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Body Brunch, RM2, Radio Masti.
2: भाई शादियों का सीजन आ गया है, लेकिन आजकल कई लोग सोचते हैं कि मेकअप सिर्फ शादियों या स्पेशल ओकेजन पे ही करना चाहिए। तो वही हम आ गए हैं आपके पल्लिए एक प्यारा सा हल्कोरी फैशन टिप लेके। तो आपको सिंपल इतना सा करना है कि आपको सिंपल सा लाइट मेकअप करना है, जिससे आपकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी लगे, बट कहते हैं ना फ्रेश लुक भी आता है, क्योंकि एक जैसे हम लोग उठते हैं और वैसे चेहरा लेकर ऑफिस के लिए निकल जाएँ तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आप उठें, आप अपना फेस जिस भी फेस वॉश से वॉश करते हैं वॉश करिए, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके फेस को बहुत ही ग्लोई एक इफेक्ट देता है। बहुत तरह के सनस्क्रीन आते हैं, तो कुछ होते हैं जो कि बहुत ही मतलब शाइन देते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। कई होते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल नहीं पता चलता कि आपने सनस्क्रीन लगाई है, तो वो लगाइए। उसके बाद छोटा सा एक डॉट लीजिए फाउंडेशन का, बिल्कुल डॉट सा उसको लीजिए फाउंडेशन एक हल्का सा, और हल्का सा टैप पूरे फेस पे कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक लिपस्टिक कलर लगाना है, जो लेना है, जो आप लिपस्टिक लगा रहे होंगे सेम लिपस्टिक, आपको कोई चेंज नहीं करना है,

0: जो भी आपके कलर क्लोथ्स के साथ में मैच करती है वो वाली लिपस्टिक लगानी है। आपने हल्की सी लिपस्टिक लगानी है, सेम लिपस्टिक आपने अपने चीक्स पे लगानी है, हल्का सा टैप करना है, सेम लिपस्टिक का हल्का सा बिल्कुल जस्ट टच आपने अपने आईज के ऊपर लगाना है और उसके बाद प्रेस पाउडर लगा लेना है। हल्का सा प्रेस पाउडर लगाएंगे आपको देखना एकदम फ्रेश लुक दिखेगी। उसके बाद आपको ब्लैक मस्कारा नहीं लगाना है, आपको बाय करना है ट्रांसपेरेंट मस्कारा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मस्कारा जो होता है वो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कुछ मेकअप किया ही नहीं। हल्का सा बिल्कुल लाइट मेकअप भी बहुत अच्छा लगता है और कहते हैं कि जब आप लाइट मेकअप करते हैं तो दूसरा जो आपको देखता है उसको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फ्रेश फेस लग रहा है और खुद को भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। तो बस कॉन्फिडेंस के लिए फील करें और इंजॉय करें अपने गाने। टिप को बहुत इंजॉय कीजिएगा और ये जरूर कीजिएगा, आपको बहुत फायदे होने वाले हैं इस टिप से।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: मस्ती ब्रांच
1: और M2 रेडियो मस्ती।
2: क्या बात है, इतने सारे मैसेजेस और आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट है। जसवी की रिक्वेस्ट पे ये गाना चला था, उन्होंने बोला था ये गाना ज़रूर चलाइएगा। आज उनकी एक सिस्टर है नीतू, उनका बर्थडे है और उनको विश कर रही हैं जसवी, विश कर रही हैं जसवी सोते जो कि विश कर रही हैं नीतू को, और कह रही हैं बहुत सी सक्सेस मिले आपको और हमेशा खुश रहो। तो ये तो बहुत ही

प्यारी बात होती है जब बहनें बहनें या भाई भाई एक दूसरे को विश करते हैं। साथ में हमारे साथ हैं अश्विनी रामसरन जी जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और आज उनका भी बर्थडे है। मौसी सुकून मौसा क्रिसन एंड कज़न सिल्विया पेचिराफ्रे से उन्हें विश कर रहे हैं, गुड हेल्थ विश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी हमेशा से तुम रही हो और हमेशा ऐसी अच्छी अच्छी बातें करती हो, फ़ोन पर हमारे साथ रहती हो, जल्दी से वापस आ जाओ ऑस्ट्रेलिया से, तो हम बहुत चाहते हैं आपको। तो यही होता है प्यार और मोहब्बत और हम भी पीछे क्यों रहे, हमारी पूरी एमबीसी टीम की तरफ से आपको हम भी विश करेंगे हैप्पी बर्थडे।

0: रेडियो मस्ती।
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में आप सुन रहे थे दीवाना है ये मन। सच बात है, जिससे प्यार होता है तो दीवाना मन हो ही जाता है। और ऐसे ही आपके जब मैसेजेस आते हैं हमारे पास, क्योंकि आप भी बस तड़प के उसको याद कर रहे होते हैं जिससे आपको मिलना होता है या जिसका मैसेज आपको बताना होता है, तो चलिए वही देख दो मैसेजेस साथ साथ ले लेते हैं। कल्याणी सेतुल जी साथ जुड़ी हुई हैं और इंजॉय कर रही हैं। साधना जी, देवानंद जी, रौनक, पद्मा, शारदा, हेमंती, सुरेखा, बेला एंड जिबुन फैमिली इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को और कह रहे हैं कि सबको बेस्ट विशेज, अपना अपना, सब अपने अपने घर में ख्याल रखें। क्या बात है। दिया जी, दिया भुजन जी के लिए उनके पापा दीपक ने एक प्यारा सा गाना मांगा है और कहा है कि मेरी बेटी ने मेरी जिंदगी को अपनी तिजोरी में कैद करके रखा हुआ है, मुझे लगता है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। और ये सच बात है, बेटियां होती ही इतनी प्यारी हैं। और उन्होंने कहा है एक प्यारा सा गाना मेरी बेटी के लिए चला दो, जिसने इतना प्यार दिया उसके लिए एक तो गाना बनता है। तो बिल्कुल हम चलाएंगे। मनीष अमर, राजा वानी, डिस्क फैमिली एंड खूबलाल फैमिली इंजॉय कर रहे हैं, तो इंजॉय कीजिए। साथ में सरोजी कामिनी, ओजुल कोवी, विमी गोदेन एंड निगे नायडू, प्रीति भावेश, योवेश अपादू फैमिली ये भी इंजॉय कर रहे हैं और सब जने यही कह रहे हैं सारे जने अपना ख्याल रखिए। थोड़ा सा मौसम ठंडा ठंडा है, जैकेट वगैरह लेके जाइए, कैप्स हैट वगैरह सब निकाल लो, कुछ चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। सो नाइस, सच बात भी यही है, ठंड हो ही गई है। राजन रघुपत जी इस समय लंदन से जुड़े हुए हैं और वो यही कह रहे हैं कि मैं बहुत मॉरिशस को मिस कर रहा हूँ, काश ऐसा होता कि कोई फ्लाइट होती जो रोज़ आ सकती थी पर मैं आ जाता, पर ये रेडियो मस्ती मुझे इंजॉय करती है और मेरे साथ रहती है तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं मॉरिशस को मिस करूँ। बट फिर इतना ही कहूंगा कि सब जने अपना ख्याल रखें क्योंकि मौसम ठंडा है। चलिए भाई एंजॉय करते हैं अपने गाने और ये स्पेशली दीपक जी की डॉटर दिया के लिए।
2: RM2 रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: टाइम चेक, सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अभी से अभी आपको नमस्कार।
5: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आज आप संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी कल शाम को एयर सेशेल्स की उड़ान HM48 से माही द्वीप पहुंचे। डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी के मेहमान हैं। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी का स्वागत उपराष्ट्रपति सेबास्टियन पिले, राजदूत इयान मैडलेन और अन्य महानुभावों द्वारा किया गया। ये प्रधानमंत्री की सेशेल्स में दूसरी यात्रा है। इससे पहले वे अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति एमिनी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आए थे। तब से मॉरिशस और सेशेल्स ने अपने सहयोग को एक नए स्तर पर पहुंचाया, खासकर मार्च में राष्ट्रीय दिवस के मौके पर सेशेल्स के राष्ट्रपति की मॉरिशस यात्रा के दौरान। उस अवसर पर मास्कारेंस कॉन्टिनेंटल शेल्स के संयुक्त प्रबंधन क्षेत्र के सतत विकास पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देशों के लोगों को जोड़ने वाले मजबूत रिश्तों पर भी ज्यादा बल दिया गया था। बजट 2026-2027 में अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म बीमा पर प्रस्तावित 5% टैक्स से मेडिकल इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा को बाहर रखा जाना चाहिए। इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के महासचिव वशिष खाम कलावन ने ये मांग की है। वे शुक्रवार 26 जून को बजट के उपायों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए मीडिया के सामने आए थे। उनका मानना है कि इस टैक्स से मॉरिशस के नागरिकों में स्वास्थ्य बीमा लेने के प्रति उत्साह कम होने का खतरा है। उनके अनुसार ऐसे समय में जब स्वास्थ्य संबंधी खर्च लगातार बढ़ रही है, ये बहुत ही जरूरी है कि आबादी को खुद को सुरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि गामा नौजादिक का मानना है कि नर्सों की ट्रेनिंग के लिए एक समर्पित कैंपस का निर्माण आज के समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। उनके अनुसार ये कदम नई पीढ़ी को तैयार करने और स्वास्थ्य प्रणाली की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके डॉक्टरों को सार्वजनिक क्षेत्र खासकर सरकारी अस्पतालों में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेहतर कार्य परिस्थितियां प्रदान करने के महत्व पर भी जोर दिया है। ये प्रस्ताव ऐसे समय पर आए हैं जब बजट 2026-2027 में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए 2,220 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि सप्ताह आए दो जबरदस्त भूकंपों के बाद बेहाल वेनेजुएला के लोग और बचाव दल बचे हुए लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। सरकार ने बताया कि काराकास और आसपास के इलाकों में भूकंप में भारी तबाही के बाद 172 लोग फंसे हुए हैं, 920 लोगों की मौत हो गई है और 3,360 लोग घायल हैं। 50,000 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। दुनिया भर से 1,600 राहत कर्मी वेनेजुएला पहुंच गए और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। थोड़ी देर में शोक समाचार। आइए शोक समाचार सुनते हैं। एसएसओ लेन मोताबा में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिंदुमती लालवा, पैदाशी नाम चाकोवा और जिन्हें सब लोग बिंदु के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी

0: थी आज सपहर के 3 बजे, आज सपहर के 3 बजे उनके बेटे श्री राजेंद्र कुमार सिंह लालवा के घर SSO लेन मोताबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताबा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। धीरूभाई अंबानी अस्पताल मुंबई में 71 साल की 71 years old की श्रीमती आशा देवी गमन, श्रीमती आशा देवी गमन पैदाशी नाम गुलप और जिन्हें सब लोग आशा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: ये वाली ब्रंच के साथ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। तो चलिए भाई, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं पर एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, पर थोड़ा उन्होंने बोला कि भाई मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक लिसनर है, वो उन्होंने बोला नाम मत बताना, तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। वो कह रहे हैं मैं पानी नहीं पी पाता हूँ ज़्यादा, क्या करूँ? कोई ऐसा टिप है जिससे मैं पानी पी सकूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे इशूज़ सिर्फ बिना पानी के हो रहे हैं, क्योंकि मैं पूरे दिन में शायद कभी हाफ ग्लास पीता हूँ, वन ग्लास पीता हूँ, मैं थोड़ा सा पतला हो गया हूँ, मुझे एक दो बार स्टोन्स भी हो गए, तो क्या कर सकता हूँ? तो भाई हम आपको सिर्फ इतना ही बोलेंगे, सिंपल ट्रिक है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको पानी को देखना ही नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है कि एक जिसमें ट्रांसपेरेंट बॉटल ना हो, मतलब वो ट्रांसपेरेंट, उसे आपको एहसास ही नहीं होना चाहिए कि वो पानी का कलर है। कोई आप ब्लू ले लीजिए, ब्लैक ले लीजिए, उसमें आप किसी को बोलिए पानी भर के यहाँ रख दीजिए, उसमें आप दो तीन ड्रॉप्स नींबू के ड्रॉप्स डाल सकते हैं, मिंट डाल सकते हैं, एक दो मतलब थोड़ा सा जैसे आधा चम्मच कोई भी जूस डाल सकते हैं जो कंसनट्रेट हो, वो डाल सकते हैं, उसको शेक कीजिए, अपने पास रखिए सामने, जो ट्रांसपेरेंट होगा। हो सकता है आपने शुरू से बहुत बार कोल्ड ड्रिंक्स पी होंगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी होंगी, तो आपका जो टेस्ट है डेवलप नहीं हो पा रहा है पानी की वजह से, क्योंकि आपको प्लेन पानी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको क्या करना है, नून में बहुत सारे फ्रूट्स खाइए, थोड़ा सा दही लीजिए, आपको थोड़ा सा आपकी जो टंग का टेस्ट है थोड़ा सा टेस्ट चेंज कीजिए, आपको पानी भी अच्छा लगना लगेगा और आपकी हेल्थ इश्यूज भी थोड़े से ठीक होंगे। और अगर आपको और ज़्यादा डिफिकल्टी होता है तो आपको क्या करना है, ब्लैक टी लेना है। मतलब आपने सिर्फ कुछ नहीं करना है, स्ट्रेनर में अपना पानी गर्म कीजिए, आप अपने जिसमें बोल में करते हैं, फिर स्ट्रेनर में थोड़ी सी चाय पत्ती जो नॉर्मल टी होती है उसको रखिए, उसके ऊपर गर्म गर्म पानी डालिए, उसका कलर चेंज होगा। सिर्फ आपने ब्लैक टी के तरह सिप सिप करके लेना है, आप उसको क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक टाइप नहीं बनाना है उसको, आप कोल्ड टी भी बना सकते हैं। मतलब आप उसके अंदर कलर चेंज कीजिए, उसको पड़े रहने दीजिए, धीरे धीरे सिप सिप करके पीजिए। इससे एक तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको पानी का टेस्ट आने लगेगा, और जब टेस्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो एंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:22 हो चुके हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। हम तो ये वेलकम भी करेंगे आपको थर्ड आवर में, और यही भी कहेंगे कि थैंक यू आप सब हमारे साथ तब से जुड़े होते हैं, चाहे मॉर्निंग 5 बजे से चलता है और हम साथ साथ चलते हैं। यही होती है ज़िंदगी और यही होता है प्यार, क्योंकि आप जब हमारे मैसेजेस पढ़ते हैं, यानी कि हम आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, जो आप हमें भेजते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मैसेज होता है जो बहुत ही दिल के करीब होता है। तो चलिए भाई आपके एक दो मैसेज साथ साथ ले लेते हैं। वीना जगवेश्वर जी अपने परिवार के साथ और अपने बच्चों के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इंजॉय कर रही हैं प्रोग्राम। अमिता रामलोल जी अपने पति किशन जी को एक सॉन्ग सुनाना चाहती हैं और कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ बहुत दिया है, तो मैं उनके लिए हर खुशी में हर दुख में उनके साथ हूँ और यही होना चाहिए। थैंक यू अमिता जी, ऐसे साथ देते रहिए। उनके साथ में ही एक प्यारा सा मैसेज है एक हमारी दोस्त का, वो कह रही हैं दियाना एंड फरहान एंड फरहान के लिए एक प्यारा सा गाना चला दीजिए, क्योंकि मैं बीमार हूँ और ये मेरे साथ ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कि मतलब मेरा परिवार होते हैं, तो हम उनके लिए भी एक गाना चलाने जा रहे हैं। साथ में एक और मैसेज है, आज प्रतीक और प्रियांशी जो कि मौका के हैं, उनका आज शादी है। डैरन श्वेता रविश प्रिशा लवेशा एंड नपादू फैमिली उन्हें विश कर रहे हैं और कह रहे हैं प्लीज़ एक, क्योंकि ये जो टाइम है इसमें बहुत सारी वेडिंग्स हैं, तो प्लीज़ एक गाना ऐसा चला

0: दीजिए, जिनके घरों में भी शादियां हैं, जिनके घरों में भी एक फेस्टिव मूड बना हुआ है, और जो लोग शादियों पे जा रहे हैं उनके लिए एक गाना चला दीजिए। तो हम चलाने वाले हैं आपके लिए, एंजॉय कीजिए अपना ये गाना।
1: Body Brunch RM2 Radio Masti।

0: household and decoration tips brought to you by Lolo Hypermarket.
1: Bolly Brunch RM2 Radio Masti.
2: चलिए जी, हाउस होल्ड टिप सुनाते हैं आपको एक प्यारी सी। जब आप मॉप लगाते हैं, मतलब आपने नॉर्मली हर घर में दो बार मॉप लगता है यानी कि पोछा, तो आपको क्या करना है कि एक बारी में जब आप पोछा लगाएंगे, पहली में आप अपना जो भी लिक्विड डालते हैं जिससे क्लीन करते हैं, आप उससे क्लीन कीजिए, पूरा घर साफ कीजिए, जिससे आपको मतलब एक क्लीन जैसे पूरी डर्ट निकल जाए। जब सेकेंड टाइम उसको आप रिंस करेंगे, मॉप को रिंस करेंगे, उसके अंदर दोबारा से पानी डालेंगे, तो उसके अंदर आप क्या करिएगा, थोड़ा सा गुनगुना पानी या थोड़ा सा गर्म पानी डालिएगा, उसके अंदर आप थोड़ा सा आधा चम्मच फैब्रिक कंडीशनर डालिएगा, जैसे जो भी जिससे आप अपने कपड़े धोते हैं वो वाला फैब्रिक कंडीशनर डालिएगा, जो भी आपको पसंद है उस वाली उसकी फ्रेग्रेंस का आप कंडीशनर ले सकते हैं, जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो भी रख सकते हैं, वो डालेंगे, उससे एक तो फ्लोर बहुत चमकेगा, साफ हो जाएगा और उसके अंदर से एक प्यारी सी फ्रेग्रेंस आएगी। उसमें भी अगर आप और ज़्यादा कुछ और खुशबू चाहते हैं कि आपका बहुत ही प्यारा सा घर लगे और खुशबू अच्छी सी आए, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, दो तीन ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आप उसमें पसंद कर सकते हैं, लेवेंडर ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, वनीला ले सकते हैं, और या तो उसमें रोज़ वाटर भी एक ढक्कन डाल सकते हैं, जिससे उसकी जो खुशबू है वो एकदम से एनहांस हो जाती है और एकदम से घर एकदम प्यारा सा लगता है, खुशबू आती है, और उस जो भी एंटर करेगा ना घर में वो कहेगा क्या बात है, आप क्या लगाते हो, क्या डालते हो, जिससे आपका घर की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी है और आपका घर बहुत प्यारा सा महकता है। तो ये जो टिप है ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपने गानों के साथ मूड बना के रखिए, क्योंकि हम चलाने वाले एक प्यारा सा गाना आप सबके लिए, वो जो मस्ती भरा हो।

0: मस्ती ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: तो दोस्तों अब चलने का वक्त आ गया है। आपका साथ हमेशा दिल को खुश करता है। मैं भी आपके साथ पूनम मैं इजाजत लेती हूँ, पर मेरे से पहले थे आपके साथ नीलमणि और उन्होंने आपको बहुत सारी गेम्स खिलाई, आपका ख्याल रखा। अब मेरे बाद आने वाली हैं हंसनी, तो अपना ख्याल रखिएगा, इंजॉय कीजिएगा उनके साथ भी ये प्यारे से गाने, और हम सबको कहेंगे बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
2: Authentic, original, and better than our rivals.

0: High, East, West,
1: 96.4,
0: Center,
2: 99.4. RM2 Radio Musti.
3: The time is brought to you by McDonald's.
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
2: Radio Musti.
0: North, South,
1: 103.5.
0: East, West,
1: 96.4.
0: Center,
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: आप सभी को नमस्कार. चेक योर टाइम. दिन के 12 बजे हैं. आइए सुनते हैं समाचार अभी के साथ. आपका नमस्कार अभी.
7: नमस्कार हंसिनी. श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. पेरिस ओली और मॉरिशस के बीच अपनी पहली उड़ानों की शुरुआत के 20 साल बाद कोसे एयरलाइंस ने मॉरिशस और टुलूज ब्लगनग के बीच एक नई सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की है. इस तरह कंपनी अपने नेटवर्क के इस प्रमुख और प्रतिष्ठित गंतव्य यानी कि मॉरिशस पर अपना विस्तार जारी रख रही है. ये उड़ान हर रविवार को संचालित की जाएगी जो मॉरिशस से रात के 7:30 बजे से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9:20 पर तुलूस पहुंचेगी. इस नए मार्ग के साथ कोसे और बड़े पैमाने पर दक्षिण पश्चिम फ्रांस के निवासियों को मॉरिशस के लिए सीधी कनेक्टिविटी दे रही है. अब तक इस क्षेत्र के यात्रियों को मॉरिशस पहुंचने के लिए मुख्य रूप से पेरिस होकर जाना पड़ता था, परंतु अब वे सीधी अधिक सरल और आरामदायक यात्रा का लाभ उठा सकेंगे. बजट 2026-2027 के तहत प्राथमिक स्कूलों में 3-5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक स्पेशलाइज्ड अर्ली इंटरवेंशन यूनिट बनाने की योजना बना रही है. इसका उद्देश्य है उन बच्चों की सहायता को मजबूत करना जिन्हें अपने विकास में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. द इंक्लूजन स्टेशन नामक एक मल्टीडिसिप्लिनरी सपोर्ट स्ट्रक्चर की निदेशिका और स्पीच थेरापिस्ट के अनुसार शुरुआत में ही हस्तक्षेप करने से बच्चों की प्रगति को बेहतर ढंग से सहारा दिया जा सकता है. बजट में स्पेशल एजुकेशन नीड्स संस्थानों, अर्गोथेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट और फिजियोथेरापिस्ट की भर्ती के साथ साथ अपने विशेष उपकरणों की खरीद और कक्षाओं को आधुनिक बनाने का भी प्रावधान है. यह एक ऐसी सहायता प्रणाली है जो न केवल बच्चे के विकास पर बल्कि उनके परिवारों और शिक्षकों पर भी सकारात्मक का प्रभाव डाल सकती है. बजट 2026-2027 में अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म बीमा पर प्रस्तावित 5% टैक्स से मेडिकल इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा को बाहर रखा जाना चाहिए. इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के महासचिव वशिष्ठाम केलावन ने यह मांग की है. वे शुक्रवार 26 जून को बजट के उपायों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए प्रेस को बुलाया था. उनका मानना है कि इस टैक्स से मॉरिशस के नागरिकों में स्वास्थ्य बीमा लेने के प्रति उत्साह कम होने का खतरा है. विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कराची शहर में कल शनिवार 27 जून की रात जोरदार धमाका हुआ. इसके बाद गोलीबारी भी हुई. इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए. खबरों के मुताबिक ये धमाका पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान रेंजर्स के दफ्तरों के पास हुआ. अधिकारियों ने तुरंत धमाके की वजह या किसी के हताहत होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. कराची के गुलिस्ताने जौहर इलाके में धमाके और उसके बाद गोलीबारी की खबर मिलने पर पुलिस और बचाव दल घटना स्थल पर पहुंच गए. तो ये थी अब तक की खबरें. आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद. थोड़ी देर में शोक समाचार.
8: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
7: बाबूलाल लेन मोंडालबिया में, बाबूलाल लेन मोंडालबिया में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंद्रावती बाबूलाल. श्रीमती इंद्रावती बाबूलाल पैदाइश नाम गिरधारी और जिन्हें सब लोग इंदिरा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के घर बाबूलाल लेन मौदालबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमायों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM एवेन्यू हिरोंडेल ला पे पीतों में एवेन्यू हिरोंडेल ला पे पीतों में 48 साल की 48 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मालिनी मुकेन पैदाशी नाम चेंगेन और जिन्हें सब लोग वानिदा के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज सपहर के तीन बजे उनके पति श्री मगावेन मुकेन के घर एवेन्यू हिरोंडेल ला पे पीतों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
5: RM2 Radio Musti
9: Love Lounge
5: RM2
9: Love Lounge

0: Radio Mustaine.
1: Love Lounge. Pyar, ishq, mohabbat. Love Lounge.
2: बारह बजकर ग्यारह मिनट दिस इज रेडियो मस्ती. यहाँ पर आपका हम सफ़र, आपका हम साथी जो बस चला आया है टू बी विद यू. एंड शुरुआत हो गई है फॉर आज का एक स्पेशल म्यूजिकल रोमांटिक जर्नी ऑफ लव लाउंज. और चलेगी हमारी ये मुलाकात दो बजे तक, इसी उम्मीद के साथ कि आज भी हम प्यार को लेकर आएंगे, हमारे इस सफ़र को और भी रंगीला हम बनाएंगे विद लव सॉन्ग्स, प्यार के कुछ नगमे, कुछ प्यार भरे मेलोडीज. और इस मुलाकात को या सजाने के लिए आपके साथ जुड़ गई है और जी हंसनी, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार. एंड विश यू ऑल अ ग्रेट संडे, हैप्पी वीकेंड एंड अ वंडरफुल आफ्टरनून. शुरुआत हो गई है. स्पेशल थैंक यू टू यू पूनम, पूनम जो यहाँ पर थी फॉर आज का बॉली ब्रंच. और अक्सर ऐसा होता है कि संडे के लिए ना तो ब्रेकफास्ट होता है ना तो लंच होता है, सीधे ब्रंच हम कर लेते हैं, क्योंकि संडे वाला दिन जो आता है उसमें वी डू हैव सम रेस्ट, कुछ आराम फरमाने का टाइम आता है. हफ्ते भर के लिए इट्स लाइक रूटीन हेक्टिक होता है, सुबह रोज़ाना टाइम पर उठना एंड काम पर जाना, इतनी सारी जो जिम्मेदारियाँ होती है ना. लेकिन जो मुलाकात संडे के लिए होती है इट्स लाइक अ बिट मोर रिलैक्सिंग, कुछ आराम हम कर लेते हैं. वी फील लाइक कूल डाउन, चिल आउट, और इसी की वजह से हम सेट कर लेते हैं ऐसे रोमांटिक शोज. तो आप सभी का वेलकम है इन आज का लव लाउंज. कुछ आप कहना चाहेंगे, मे बी हमारे गानों को सुनकर किसी की याद आएगी और आपके जो दिल की बातें हैं वो आप शेयर करना चाहेंगे. सो इसके लिए करेंगे आप लोगों का इंतजार ऑन 5499124 फॉर योर मैसेजेस और आपके डेडिकेशंस के लिए.
1: Love Lounge.
3: RM2.
1: Love Lounge.

0: Love Lounge. Dear Ishq Mohabbat. Love Lounge.
1: स्वागत है आपका सब इन लव लाउंज जहां पर मुस्कान के पीछे एक कहानी है और हर दिल की अपनी एक जुबान और आपकी जुबानी जो भी आएगी मैसेजेस द्वारा वो हम दिल से पढ़ेंगे जो आप प्यार से किसी को याद करना आप चाहेंगे अगर ऐसी हालात है कि दिल की बातें शेयर करने से आपको अच्छा लगेगा सो व्हाई नॉट ये एक ऐसा सफ़र आया है जहाँ पर यू कैन फ्री आउट योर इमोशंस दिल में दबे बातों को आप बयां कर लीजिए यहाँ पर गाने हैं दे विल बी हैविंग सम मेलोडीज प्यार के साथ गाने हम लेकर आएंगे एंड यहाँ पर प्यार के साथ ही हम गाने जो है चलाते रहेंगे तो यहाँ पर सफ़र आप लोगों के लिए बिल्कुल तय है अब टिल 2 पीएम तक हंसनी यहाँ पर है मुलाकात हमारी तो होती रहती है ना आप लोगों के साथ कुछ बातें हम शेयर कर लेते हैं कुछ तो आप शेयर कर लेते हो ऐसा ये कनेक्शन ऐसा ये बंधन तो चलता रहता है कभी एक नज़र ही काफ़ी होती है ना दिल की बात कहने के लिए राइट इसी एहसास को और भी खास बनाने के लिए पेश है जो अगला गाना हमने प्यार से चुना है आपके लिए आई रियली होप यू विल एंजॉय सो जहाँ पर भी साथ जारी है इट्स अ फैमिली टाइम इट्स अ वीकेंड संडे वाला आफ्टरनून है सो वीकेंड को एंजॉय करें लेट अस मेक इट अ ब्यूटिफुल मेमोरेबल फैमिली टाइम एंड अटैबल होकर लंच को एंजॉय किया जा रहा है सो फैमिली टाइम को एंजॉय करें आई विश यू ऑल अ बन अपेटी
0: Love Lounge.
2: RM2.
0: Love Lounge.

0: Love Lounge. प्यार, इश्क, मोहब्बत. Love Lounge.
1: प्यार की बातें हो रही है राइट ऑन रेडियो मस्ती. आपका हम सफर है एंड दिस इज आवर लव लाउंज सेलिब्रेटिंग लव. और आज भी प्यार के साथ मैसेजेस आ रही हैं जिससे आपको थैंक यू तो कहना चाहेंगे. ये तो एक ऐसा रिश्ता है जो दिल से बना है, हमारा और आपका दिल का रिश्ता, थैंक्स टू आवर रेडियो मस्ती. तो यहाँ पर मैसेजेस टाइम ऑन 5491294. हेलो रीना, कैसी हो? विशिंग यू अ हैप्पी संडे. रीना डुकरन का साथ है, एंजॉयिंग लॉट्स फॉर दिस लवली वीकेंड परिवार के साथ. आपकी जो प्यारी सी बहना है आई हुई है आपके यहाँ, हैविंग लंच टुगेदर. सो हैप्पी लंच आप सभी को. यू हैव ऑल्सो योर टू लवली डॉटर्स दिशा एंड पूर्वी. मामा है अमृता एंड भाई केविन, और साथ में है बहन स्वीता, नीस अक्षिता, ब्रदर इन लॉ अक्षय. मिलकर साथ यहाँ पर एकदम मस्त है, एंजॉयिंग लंच, कुछ बातें हो रही हैं, फैमिली टाइम, दैट्स ऑसम. सो एंजॉय योर वीकेंड और साथ निभाते रहिए आप ऑन रेडियो मस्ती. वी हैव इट फॉर निकेश. हाय, कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर योर स्वीट वर्ड्स. यहाँ पर गाना बिल्कुल आपके लिए चल जाएगा एंड अप्रिसिएशन के लिए आपको धन्यवाद तो कहना चाहेंगे. ऑलवेज फॉर अप्रिशिएटिंग द सॉन्ग कलेक्शन ऑफ लव लाउंज. Hello to Radio Masti team. Hello ji, Radha aayi hai. Wanna say thank you to my love Krishna for being in your life. After so many decades, as we are 60 plus. Wow, ye kaisa pyar hai jo bilkul anokha hai. That's really really strong. So message to yahan par aaya hai ki pyar hamesha khil rahe, khilte rahe. After day and day aur hamesha ke liye bas bana rahe. तो राधा जी, आपके प्यार कृष्णा के लिए ज़रूर एक खास गाना तो बनता है. टू मेक इट मोर ऑसम, टू मेक इट लुक वंडरफुल. और दिल से हम यही प्रार्थनाएं करेंगे कि आपका जो प्यार है बस यूं ही और भी गहरा होता जाए. गॉड ब्लेस यू. और अगला जो स्पेशल रोमांटिक सॉन्ग है वो जाएगा आप दोनों के लिए.
0: लव लाउंज, RM2. लव लाउंज.

0: Love Lounge.
1: RM2.
0: Love Lounge.
2: साथ फिर लिए जाएंगे आज, अगर शादी होगी किसी की तो धूमधाम से हम बैंड बाजा बारात लेके आएंगे।

और दुल्हनिया साथ जाएगी अपने दुल्हे राजा के साथ. सो शादी के लिए हमारे गुड विशेस उन सभी जोड़ियों के लिए है. जीवन की हर राह पर उनका साथ तो चाहिए ना, खुशियों में भी गमों में भी बस उन्हीं का साथ चाहिए. बस इतनी सी है प्रार्थनाएं रब से, हर जन्म में वो ही आपका बने जीवन साथी. तो यहाँ पर समला फीलिंग्स के साथ कुछ अच्छे अच्छे गाने जो हम लेकर आ रहे हैं. ऑफ कोर्स टू मेक इट लविंग, कुछ सुविनियर्स बिल्कुल वापस आ रहे हैं. राइट, दिस इज द मैजिक ऑफ रेडियो मस्ती जो हमेशा आपके साथ रहता है. एंड दिस इज आवर लव लाउंज जो चलेगा दिन के 2 बजे तक. हंसने का साथ निभाते रहिए, वादा आपने किया है ना साथ निभाने के लिए. अटिल 2 PM, राइट.

0: Center 99.4.
1: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: Wish you all a very good afternoon. I want to check your time. It's already 1 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमेहरा के साथ आपको नमस्कार और आदाब
4: नमस्कार आदाब कुछ वक्त तक बंद रहने के बाद रिश्लियो वीमेन एम्पावरमेंट सेंटर ने फिर से अपना दरवाजा खोला है कल एक खास सत्र लगाया गया जिसके दौरान महिलाओं के कामों पर रोशनी डाली गई ये वो औरतें रहीं जिन्हें मुनासिब ट्रेनिंग मिला एक प्रदर्शनी के जरिए उन्होंने अपनी हुनरमंदी का मुजाहिरा किया इस मौके पर उन्हें काम करने के लिए नए उपकरण भी दिए गए ड्रग नोशी पर रोक लगाना परिवारों और प्रभावितों को बेहतर सहारा देना ये रोकथाम इलाज और रिहैबिलिटेशन सेवाएं प्रदान करने वाला पहला नेशनल विलेज का मकसद है कल प्लाजा रोजहिल में उसने एक गतिविधि का अहतमाम किया सरकारी इदारों गैर सरकारी संगठनों और स्वास्थ्य पेशेवरों ने समर्थन और तावुन दिया कुछ शक की गतिविधियों को लेकर फोन पर मिली चेतावनी के चलते एमसो ने फिनिक्स में एक पेट शॉप में हस्तक्षेप किया वहां पर जाकर ये पाया गया कि दुकानदार बगैर किसी लाइसेंस से काम कर रहा था अफसरों ने ये भी पाया कि इमारत की अच्छी हालत नहीं थी जहां जानवरों को बुरे तरीके से बांध कर रखा गया और उनमें कुछ जानवर मर भी चुके थे ये देखकर एक बड़ी बचाव कार्रवाई शुरू की गई है जो कई दिनों तक जारी रहेगी और फ्रांस में तेज गर्मी के चलते रेड अलर्ट जारी की गई है मरने वालों की तादाद 1000 के पार पहुंच गई है अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है तो अभी के लिए बस इतना ही शोक समाचार सुनिए
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: Lot number 48, 48, Mosselman VOS 1, La Baraque Road, Rivière des Anguilles, mais 61 साल के, 61 years old. Shri Srinivasan Swaminathan, Shri Srinivasan Swaminathan, जो Srinivasan के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है, अर्थे आज शाम 4 बजे, इनके बेटे, Sandiren Swaminathan के घर, lot number 48, number 48, Mosselman VOS 1, La Baraque Road, Rivière des Anguilles से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 4 पीएम सेवक सिंह लेन गोकुला में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड श्रीमती माउती दुर्गा पैदाशी नाम रावा जो माउती के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है अर्थे कल 11 बजे इनके बेटे रंजीत दुर्गा के घर सेवक सिंह लेन गोकुला से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामीची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टू मोरवाती 11 एम शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है
0: RM2 रेडियो मस्ती लव लाउंज
1: RM2
0: लव लाउंज

0: Love Lounge. Pyar, ishq, mohabbat. Love Lounge.
1: कैलाश खेर की आवाज गूंज रही थी ऑन रेडियो मस्ती. दैट वाज वन ऑफ द आइकॉनिक सॉन्ग तेरी दीवानी. और सुनते ही बस जो दीवानापन है ना वो कुछ बढ़ जाता है. तेरी दीवानी बनकर मुस्कुराना आ गया, तेरे इश्क में जीने का बहाना मिल गया.

0: हूँ बस इतना सा अफसाना है तेरे बिना हर खुशी भी बेगाना है दिल की हर धड़कन तेरा ही नाम लेती है और तू ही मेरी मोहब्बत तू ही मेरा ठिकाना है ये एक खूबसूरत अशारी इट्स कमिंग फ्रॉम आकाश थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट वाज लवली और तेरी दीवानी ये तो आपका वन ऑफ द बेस्ट गाना है जब भी सुनते हो तो आप अपनी दीवानी को याद कर लेते हो ये तो है कनेक्शन जी मैं तो कहती रहती हूँ कुछ गाने ऐसे होते हैं वी डू ब्रिंग बैक द कनेक्शन तो यहाँ पर गाना है आपके लिए और आपकी दीवानी के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एंजॉयिंग आज का लव लाउंज प्रणाम हंसनी जी प्रणाम टू यू टू एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल सिलेक्शंस ये तो अच्छी बात है जानकर खुशी हुई ट्रियोले से आए हैं सूरज भाई तो आपका वेलकम है सूरज शर्मा सजादा का वेलकम बेटा है निशाल विशिंग एवरीवन बॉन कुरेज जो यहाँ पर कनेक्टेड है और साथ में गाना फॉर ऑल योर परिवार है जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है यहाँ पर आकाश चेतन मनसोक का साथ है फ्रॉम बॉम्बू और उन्होंने अर्ज किया है मैं अल्फाज हूँ तेरी हर बात समझता हूँ मैं एहसास हूँ तेरे जज्बात समझता हूँ कब पूछा मैंने कि क्यों दूर हो मुझसे कब पूछा मैंने कि क्यों दूर हो मुझसे मैं दिल रखता हूँ तेरे हालात समझता हूँ Thank you for sharing and making this beautiful journey even so romantic and more wonderful. Yahan pe mulaqat Hansini ke saath up till 2 p.m. Must stay well connected.
1: Love Lounge.
2: RM2.
1: Love Lounge.

0: Love Lounge. Dear Ishq Mohammed. Love Lounge.
1: तेरी गलियों से गुजरना अब भी एक आदत सी है, हर मोड़ पर तेरी यादों की इबादत सी है। तू चाहे साथ ना हो आज, तू चाहे साथ ना हो आज, पर दिल को तेरी ही जरूरत है। तेरी गलियों से गुजरना अब भी एक आदत सी है। यहाँ पर तेरी गलियाँ, that was fresh, that was souvenir, that was lovely, and प्यार के साथ ही हमने आपको सुनाया है। I really hope कि आज का जो कलेक्शन हम लेकर आ रहे हैं ना, I really hope कि आपको पसंद आ रहा है। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस souvenirs बनकर रह जाते हैं। So we are here to set the mood for आज का Love Lounge, right? It's a weekend, it's a Sunday वाला दिन। और मौसम की बात करें तो अभी मौसम कैसा है, जब मैं आ रही थी MBC तब तो सुहाना मौसम था, लेकिन मौसम है ना बदल जाता है। अभी तो मैं स्टूडियो में हूँ मोका में, एंड ऑन रेडियो मस्ती आपका साथ दे रही हूँ हंसनी, एंड मौसम जैसा भी हो आपको पता है विल ब्रिंग इट मोर रोमांटिक, और भी प्यारा हम बना लेते हैं आप लोगों के लिए। अगर रूठा हुआ है कोई तो हम बना लेते हैं ऑन योर बिहाफ रोमांटिक सॉन्ग से चला के, टू वेट मैसेजेस। अगर है कोई अभी उदास, आंखें नम है, किसी की याद आ रही है, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना सुनते ही हम उनको याद कर लेते हैं। कनेक्शन तो ऐसा ही होता है, रोमांटिक सॉन्ग्स, म्यूजिक और प्यार। तो यहाँ पर है अगर ये ऐसा दर्द जो दिल में है और दिल को भारी बना रहा है, सो उन पर मरहम लगाने के लिए ऑलवेज एंड फॉरएवर आपके साथ आपका रेडियो मस्ती, एंड वी ब्रिंग यू ओनली द बेस्ट। तो अभी के लिए काफ़ी कूल रोमांटिक सॉन्ग्स हो गया ना, तो अभी हमारे लिस्ट में एक स्वीट हार्ट वाला गाना है, सुनना चाहेंगे? तो चलिए बीट को थोड़ा सा हम बदल लेते हैं आपके लिए स्वीट हार्ट वाला गाना चल पड़ेगा, टू मेक इट मोर वंडरफुल एंड टू विश यू अ वंडरफुल स्वीट हार्ट वाला वीकेंड।
0: Love Lounge.
2: RM2.
0: Love Lounge.

0: Love Lounge, dear Ishq Mohammed. Love Lounge.
1: थोड़ा प्यार है और थोड़ी सी कशिश भी छा गई है. दिस इज रेडियो मस्ती, ऑलवेज ब्रिंग यू द बेस्ट. और अभी हम लव लाउंज के साथ कनेक्टेड है प्योरली इन द वर्ल्ड ऑफ लव. प्यार की दुनिया में हम बस साथ दे रही है. और टाइम फॉर सम मैसेजेस नाउ ऑन 5491294. कीप सेंडिंग मी योर बेस्ट ऑफ फीलिंग्स. जहाँ पर आप अपने प्यार को याद कर रही हो वहीं पर हम चले आएंगे टू मेक इट मोर लवली. हेलो लव लाउंज टीम, हेलो हंसनी, हेलो जी कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, थैंक यू. और यहाँ पर गाना जो है जाएगा मेरे प्यार कृष्णा के लिए. बट बिलीव दैट राधा और कृष्णा की प्रेम कहानी इज प्योर एंड इटर्नल, इसीलिए वो अपनी राधा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं. तो आप दोनों के लिए एक स्पेशल सॉन्ग चल पड़ेगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग. यलेश बेटा कैसे हो? आप सोगी नाम से साथ निभा रही हो. यहाँ पर गाना एकदम मस्त चल जाएगा आपके लिए. एंड लविंग द गुड म्यूजिक जो अभी चल रहा है, तो आपके लिए ज़रूर एक प्यारा सा, आपके लिए, मामा के लिए एंड सभी शाम परिवार के लिए भी. एंड वी हैव द रिगार्ड्स कमिंग फ्रॉम रामलोचन. रोहन जी कैसे हो? थैंक यू फॉर योर कंसर्न, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एज ऑलवेज. एक खास गाना तो बनता है इस दिन को और भी मदमस्त बनाने के लिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग. एंड बहुत आप ब्लाउज चल रही घूमने के लिए, लेट्स गो. यहाँ पे नितीश, प्रणाम टू यू, कैसे हो? रली हो कि सब ठीक ठाक? और हमेशा यहाँ पे लवली गानों के साथ आप कनेक्टेड हो, मामा भी साथ दे रही है. सो हेलो टू मीला जी, प्रणाम टू हर. और गाना आपके लिए, फॉर दिव्या के लिए, परी के लिए, अर्वली हो कि दोनों इस समय साथ निभा रही है. और गाना हमारे ऑडियंस के लिए भी चल जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अप्रिशिएटिंग द सॉन्ग कलेक्शन फॉर लव लाउंज जो हम डेडिकेट कर रहे हैं आप सबके लिए. सो कीप लिसनिंग. एंड वी हैव इट नेक्स्ट फॉर बाबू शोना एंड परी के लिए एज वेल, जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है एज ऑलवेज. और यहाँ पर चेहरे की बात हो रही है तो बस कुछ तारीफ हो जाए तो अच्छा लगेगा. तेरा चेहरा ही हर दुआ का नूर होता है, तेरे मुस्कान ही मेरी खुशियों का सुरूर है. जब ही देखो तुझे तो क्या होता है, वक्त थम जाए तो ही मेरी मोहब्बत का सबसे हसीन

0: दस्तूर है। तेरा चेहरा देखकर दिल को सुकून मिल जाता है, जैसे हर गम का निशान मिट जाता है ना। तो सामने हो तो दुनिया हसीन लगती है, तेरा एहसास ही मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ये आप दोनों के लिए एंजॉय।
1: जमीन पे चलता हुआ माह

0: Alright, lovely people, time for me to wave goodbye. इतना सारा प्यार, इतने सारे good messages के साथ आप हाजिर थे इन आज का लव लाउंज. अभी आ गई है परी. हेलो परी, कैसे हो? वेलकम वेलकम ऑन रेडियो मस्ती. वेलकम फॉर आज का प्लग एंड प्ले.
1: हेलो हंसिनी, एंड अ बिग हेलो हमारे सभी लिसनर्स को जो हमेशा इतना इतने प्यार से हमारा साथ देते हैं. एंड थैंक यू फॉर प्लेइंग सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स.
0: यानी कि आते आते यू वर लाइक हैविंग अ जॉयफुल ड्राइव.
1: जब गाने से चलते हैं वो भी अब सैटरडे संडे ऐसा हो और मौसम इतना सुहाना हो, देन इट्स अ परफेक्ट वीकेंड.
0: यानी कि हमारी परी एकदम रोमांटिक मूड में है.
1: एग्जैक्टली, आपने मेरा मूड सेट किया है.
0: यानी कि जब हम वापस जाएंगे अब विल बी गेटिंग सम मोर एंड मोर रोमांटिक सॉन्ग.
1: प्रेशर डाल दिया, प्रेशर.
0: ऑलराइट, सो लिविंग यू यहां पर विद परी जो लेकर आ रही है नेक्स्ट शो, दैट विल बी आज का प्लग एंड प्ले.

0: Latest news and the greatest mix of music. Feel the musty.
1: Time check, 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
2: नमस्कार और आदाब। ड्रग नोशी पर रोक लगाना, परिवारों और प्रभावितों को बेहतर सहारा देना, ये रोकथाम, इलाज और रिहैबिलिटेशन सेवाएं प्रदान करने वाले पहले नेशनल विलेज का मकसद है। कल प्लाजा रोजिल में उसने एक गतिविधि का अहतमाम किया। सरकारी इदारों, गैर सरकारी संगठनों और स्वास्थ्य पेशेवरों ने समर्थन और तआवुन दिया। कुछ वक्त तक बंद रहने के बाद रिश्लियो वीमेन एम्पावरमेंट सेंटर ने फिर से अपना दरवाज़ा खोल दिया। कल एक खास सत्र लगाया गया जिसके दौरान महिलाओं के कामों पर रोशनी डाली गई। ये वो औरतें रहीं जिन्हें मुनासिब ट्रेनिंग मिला। एक प्रदर्शनी के जरिए उन्होंने अपनी हुनरमंदी का मुजाहरा किया। इस मौके पर उन्हें काम करने के लिए नई मशीनें भी दी गईं। कुछ शक की गतिविधियों को लेकर फोन पर मिली चेतावनी के चलते एमसो ने फिनिक्स में एक पेट शॉप में हस्तक्षेप किया। वहां पर जाकर ये पाया गया कि दुकानदार बगैर किसी लाइसेंस से काम कर रहा था। अफसरों ने यह भी पाया कि इमारत की अच्छी हालत नहीं थी, जहां जानवरों को बुरे तरीके से बांध कर रखा गया। उनमें कुछ जानवर मर भी चुके थे। ये देखकर एक बड़ी बचाव कार्रवाई शुरू की गई है जो कुछ दिनों तक जारी रहेगी। देश में अमेरिका के दक्षिण पूर्व में केंटकी में जबरदस्त बाढ़ उतर आई है। कम से कम 4 लोगों की मौत हुई, पुल ढह गए हैं और दर्जनों बचाव कार्रवाइयों की शुरुआत की गई। अधिकारियों ने कहा कि अगर और ज्यादा बारिश हुई तो हालत बदतर होगी। केंटकी में आपात स्थिति की घोषणा भी की गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड बॉडी जामुगत में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जयरानी ठाकुरी जो ज्योति के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज से पैर तीन बजे इनके घर रॉयल रोड बॉडी जामुगत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो में बग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। नंबर 48 Mosemovi OS 1 La Baraque Road, Rivière des Anguilles, 60 Salke, 61 years old, Shri Srinivasan Sominaden, जो श्रीनिवासन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे इनके बेटे संदिरन सोमिनाडेन के घर, लॉट नंबर 48 Mosemovi OS 1 La Baraque Road, Rivière des Anguilles से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीशानी रोजबल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Plug and play.
4: RM2.
3: Plug and play.

वार्म वेलकम दोस्तों, आपका संडे आफ्टरनून, आपकी ये जो खूबसूरत सी दोपहर है उसे खास एंड स्पेशल बनाने आए हैं विद प्लग एंड प्ले। मैं हूं परी आपके साथ, थैंकिंग हंसनी फॉर द वंडरफुल सिलेक्शन जो उन्होंने आपके लिए चलाए। और चलिए यहां पर म्यूजिक को हम कंटिन्यू करते हैं विद प्लग एंड प्ले। हमारा ये प्रोग्राम दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ सोनू निगम। हैप्पी हैप्पी संडे, ब्यूटीफुल मौसम, और ऐसे में आपके जो भी प्लान्स है नॉट टू फॉरगेट, कुछ प्यारे गाने चलते रहेंगे आपके लिए ऑन रेडियो मस्ती। परी का साथ टिल 4 PM, एंजॉय दिस वन।

0: To Bollywood, Radio Musti.
1: Plug and play.
2: RM2.
3: तो चलिए दोस्तों, संडे आफ्टरनून कनेक्टेड हैं आप हमारे साथ एंड आई डू होप दैट यू आर एंजॉयिंग योर संडे आफ्टरनून. जैसे हमने कहा कि आज मौसम इज टोटली ऑसम और इस ऑसम मौसम में व्हाट आर योर प्लान्स. जो भी है आपके प्लान्स, हम तो है आपके म्यूजिकल हम सफर. मंडे हो या संडे, एवरी डे आपके लिए गुड म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले. सो वेल फ्रेंड्स, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन, जैसे कि आप जानते हैं योर दिल का हाल, यू कैन ऑलवेज शेयर ऑन 5499 1294. और कहते हैं प्लीज प्ले एक अगला गाना और ये होगा फॉर यलेशा मसूर. नाम से हमारा साथ दे रहे हैं आप एंड विशिंग अ हैप्पी संडे टू एवरीवन. सभी शाम परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑल द वे फ्रॉम सुरिनाम. सो आई डू होप यू आर हैविंग अ नाइस नाइस टाइम. चलिए अभी के लिए यहाँ पर एक और स्वीट सा डेडिकेशन, एंजॉयिंग द सिलेक्शन. और इस वक्त गातो पता अत्य तैयार हो रहा है एट नानीज प्लेस एंड डेडिकेटिंग गाना ये होगा फॉर बेटी खायरा. साथ में है बेटा प्रयान एंड कमिंग फ्रॉम ममा कृष्टि, नानी जानी, अनीता, सरिता, नाना मुकेश, सुरेन, मनोज, निकित सिंह परिवार जो रोजवेल से हमारा साथ दे रहे हैं एंड रिपोल परिवार फ्रॉम लिस्कालिए. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड वी ऑल्सो हैव शिवानी. ए शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आप एंड एंजॉयिंग द सिलेक्शन. अ बिग हेलो गोज आउट टू यू स्वीट हार्ट. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. चलिए सभी के लिए यहाँ पर वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अ वेरी पॉपुलर वन एवरग्रीन सॉन्ग जो इस वक्त आपके लिए हम चला रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती. गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ शाहरुख खान काजोल एंड फॉर ऑल द फैंस ऑफ कुमार सानू अलका याग्निक. दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, बाजीगर फिल्म का टाइटल ट्रैक आप सभी के लिए. चलिए दोस्तों साथ दे रहे हैं आप आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन 5499 1294 पर.

सो वेल फ्रेंड्स, साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती एंड वी हैव बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए। संडे का दिन जहां पर आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, दिन भर की थकान को दूर करने के लिए थोड़ा सा एनर्जी एक बार फिर गेन करने के लिए आज ही का दिन तो मिलता है। सो डू एंजॉय सम मी टाइम जहां पर आप खुद के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालें। और म्यूजिक, जैसे हम कहते हैं, इट्स ऑलवेज थेरेपी। जब हम गुड म्यूजिक सुनते हैं, मूड तो सेट हो ही जाता है। कोशिश यही है कि इन गानों के चलते आप अपने मूड को सेट कर पाएं, आप अपनी स्माइल को बरकरार रख पाएं। एंड थोड़ी ही देर में दोस्तों हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर परी का साथ, एंड दैट्स योर प्लग एंड प्ले ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। साथ दे रहे हैं आप भी, सो योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस, आपके अपनों के नाम, आपके स्वीट डेडिकेशंस हमारे मैजिकल नंबर 5499-1294 पर। फॉर नाउ वी हैव दिस सुपर रोमांटिक गाना, दिल को छूने वाला ये गाना आप सभी के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं फ्रॉम द फिल्म एजेंट विनोद। एंजॉय दिस वन।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check, 3 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
6: नमस्कार आदाब. ड्रग नोशी पर रोक लगाना, परिवारों और प्रभावितों को बेहतर सहारा देना, ये रोकथाम, इलाज और रिहैबिलिटेशन सेवाएं प्रदान करने वाले पहले नेशनल विलेज का मकसद है. कल प्लाजा रोजिल में उसने गतिविधि का अहतमाम किया. सरकारी इदारों, गैर सरकारी संगठनों और स्वास्थ्य पेशेवरों ने समर्थन और तावुन दिया. कुछ वक्त तक बंद रहने के बाद खिश्तियों वीमेन एम्पावरमेंट सेंटर ने फिर से अपना दरवाज़ा खोला है. कल एक खास सत्र लगाया गया जिसके दौरान महिलाओं के कामों पर रोशनी डाली गई. ये वो औरतें रहीं जिन्हें मुनासिब ट्रेनिंग मिला. एक प्रदर्शनी के जरिए उन्होंने अपनी हुनरमंदी का मुजाहिरा किया. विदेश में अमेरिका के दक्षिण पूर्व में कंटकी में ज़बरदस्त बारूद उतर आई है. कम अज़ कम 4 लोगों की मौत हुई. पुल ढह गए हैं और दर्जनों बचाव कार्रवाइयों की शुरुआत की गई. अधिकारियों ने कहा कि अगर और ज़्यादा बारिश हुई तो हालत बदतर

0: तैयार होगी कंतकी में आपात स्थिति की घोषणा की गई है। अफगानिस्तान में भी कुदरती आफत मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन पेश आए हैं। कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। अफगानिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बहुत से लोग घायल भी हुए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड बॉडी जामुगत में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जयरानी ठाकुरी, श्रीमती जयरानी ठाकुरी जो ज्योति के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी अभी तीन बजे इनके घर रॉयल रोड बॉडी जामुगत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बू में की शमशान भूमि ले जाई जा रही है। फ्लोरियाल में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड श्रीमती शारदा देवी छट्टू, श्रीमती शारदा देवी छट्टू पैदाइशी नाम भी सिसौ जो गरीब के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल एक बजे एलियन सोनबुबासना से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिकागा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अमित मिश्रा की आवाज़ और वेलकम करते हैं आपका विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। हमारे सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं संडे आफ्टरनून में आपके लिए गुड म्यूजिक, दैट्स योर प्लग एंड प्ले। मैं हूँ परी आपके साथ टिल 4 PM। सो फॉर नाउ, जैसे हम कहते हैं लाइफ में मुस्कुराहट की जो कीमत है ये तो हर कोई जानता है, लेकिन अक्सर हम मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। ज़िंदगी की भाग दौड़ में कई हसीन लम्हे जो है वो पीछे छूट जाते हैं, लेकिन संडे का दिन, आपका वीकेंड आपको मिला है ताकि आप कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स कलेक्ट कर पाएं। कहते हैं ना दोस्तों कि ज़िंदगी की डायरी में कुछ हसीन पन्ने जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही पन्ने तो हैं जो बाद में याद आते हैं। सो मेक योर संडे अ ब्यूटीफुल संडे, अपनों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ कुछ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करें। और अगर हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन ऑन 5499-1294। फॉर नाउ वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना, एंजॉय दिस वन।

0: Plug and Play.
1: RM2.
2: सो वेल फ्रेंड्स, संडे का जो फंडा है दैट्स वेरी सिंपल, चिल करने का, रिलैक्स करने का, गानों को एंजॉय करने का और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेने का। वैसे दोस्तों, वैसे तो सर्दी वाला मौसम जो है वो शुरू हो चुका है और सर्दियों वाली ये दोपहर कुछ ज़्यादा ही स्पेशल लगती है। स्पेशली ऐसे में अगर आपको मौका मिल जाए थोड़ा सा रिलैक्स करने का, यानी कि संडे का वो रिलैक्सिंग आफ्टरनून, संडे का वो रिलैक्सिंग टाइम जहाँ पर आपको ना काम का स्ट्रेस लेना है, ना आपको कहीं पर भी जाना है, बस आपको घर पर रिलैक्स करना है। कोजी मौसम में यू कैन एंजॉय, आप शायद अपनी गर्मा गर्म चाय कॉफी के साथ यू कैन एंजॉय अ गुड मूवी घर पर, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आज कहीं पर इस मौसम में एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाए, यानी कि मौसम जब सुहाना होता है तो सब कुछ अच्छा ही लगता है और ऐसे में अगर जब बैकग्राउंड में ब्यूटीफुल सॉन्ग चल रहे हो सो लगता है कि एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। और यहाँ पर कोशिश यही है कि आपके इस संडे को हम परफेक्ट संडे बनाएं। छुट्टी का दिन है दोस्तों और हम जानते हैं कि छुट्टी पाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, मंडे टू फ्राइडे जो आप सुबह से शाम काम करते हैं। सो फिर संडे का दिन तो बनता है जहां पर हम आपको थोड़ा सा पैम्पर करें म्यूजिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे हो या फिर मंडे टू संडे, 24/7 आपके साथ, यह है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती। मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM। साथ दे रहे हैं यहां पर रितेश, रानी, आदर्श, निया, नशामा, निष्ठा, राधा, युषरा, शकील, वशिष, याशना, जयश्री और सभी जीवन परिवार ऑफ बेल एयर। और कहते हैं गाना हो जाए फॉर द एंटायर क्रू ऑफ रेडियो मस्ती और मेरे नाम भी। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही बस अगर आपका साथ रहा तो हमारा दिन तो अच्छा बीत ही जाता है। सो थैंक यू so much guys for making it special with this beautiful message. And यहाँ पर आई है हमारी प्यारी सी रोशनी, आप भी गुडी गुड मैसेज के साथ आई है और कहती है घर पर नहीं थी लेकिन साथ नहीं छोड़ा, कार में भी गानों को तो सुन ही रही थी। सो हैप्पी संडे टू यू रोशनी, एंड सेंडिंग यू लोड्स ऑफ गुड विशेज। एंड ऐसे ही साथ देते रहिए, संडे हो या मंडे, हमारे

That's really sweet. देखिए जब आप हमें family बोलते हैं, it really means a lot और सीधा ये दिल तक पहुंच जाता है. So thank you for the love and thank you for being so so sweet. हमारे सभी listeners जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, आपके messages, आपके dedications ऐसे ही रहेगा इंतजार 5499 1294 पर.

और चलिए दोस्तों इसी खूबसूरत गाने के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुडबाय। आ गए हैं संजय लेकर कुछ और प्यारे गाने आपके लिए। सो एंजॉय योर संडे उनकी कंपनी में। आपसे मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक। स्टे कनेक्टेड टू रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: शाम के चार बज रहे हैं। सुनते समाचार सुमेरा के साथ नमस्कार आदाब।
6: नमस्कार आदाब। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और उनकी पत्नी ने आज सेशल के राष्ट्रपति पैट्रिक अमिनी और उनकी पत्नी वेरोनिक अमिनी की दावत पर एक लंच में हिस्सा लिया। एडन आइलैंड पर यह मुलाकात गहरी दोस्ती और मॉरिशस तथा सेशल के दरमियान मौजूद गहरे रिश्ते के आधार पर की गई है। दोनों छोटे टापू देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं। ये दूसरी बार के लिए यानी ये मुलाकात डॉक्टर नवीन रामगुलाम और राष्ट्रपति पैट्रिक अमिनी के बीच दूसरी बार है। पिछले मार्च महीने में सेशल के राष्ट्र नेता ने राष्ट्र पर्व के मौके पर मॉरिशस का औपचारिक दौरा किया। इस लंच के दौरान अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ भी मौजूद थे। बहुत सालों से सार्वजनिक आवास योजनाएं कम आमदनी वाले घरों के लिए ही विकसित की जाती रही हैं, लेकिन बजट 2026-2027 में औसत आमदनी वाले परिवारों के लिए भी नए कदमों का ऐलान किया गया। करीब 1000 आवास बनवाए जाएंगे और बुनियादी मूलढांचों के साथ 100 जमीनों को तैयार किया जाएगा। राष्ट्रसभा में आवास मंत्री ने कहा कि इन कदमों का मकसद 48,000 रुपये की माहवार तनख्वाह कमाने वाले लोगों के लिए है जो मकान मालिक बनना चाहते हैं। पॉइंट साबले में गोल्डन नाले में प्रदूषण के चलते अधिकारी जांच कर रहे हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कार्य की शुरुआत से पहली वाली प्रक्रियाओं में कमी नोट की। प्लेटफॉर्म मोरिस लोंविरोनमों का मानना है कि जिम्मेदारी सभी सतह पर होनी चाहिए। प्रदेश में वेनेजुएला में भूस्खलन की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 1430 तक पहुंच गया है। 3238 लोग घायल बताए जाते हैं। माहिरों का कहना है कि गए 123 सालों में वेनेजुएला में ये सबसे गंभीर कुदरती वाकया पेश आया है। बचाव कार्रवाई तेजी और ठोस तरीके से की जा रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
7: Music, Dr. Gadda.
4: RM2, Radio Musty.

0: बहुत सी चाहतें बहुत सी उल्फतें बहुत सी हसरतें संजोए आए हैं हम आपकी महफिल में सबों को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड आई एम वेरी वेलकम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती आपकी संडे शाम संजय के साथ वेलकम टू ऑल आवर डियर लिसनर्स
1: Music, Tuck Tuck Tuck. RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: Thank you for tuning in on Radio Masti every Sunday evening, 4 se 7. Sanjay ke saath in time for you to play with MBC. Yes, looking for the perfect gift idea? Mysticworld.mu jahan par aapko jana chahiye. And discover exclusive gift cards, gold and silver jewelry, authentic crystals and stunning home decor. Mysticworld.mu has exactly what you are looking for. Visit our website today or call us at 58 80 76 52. So bhagne walon ko aur jinki jeet hogi unko milne wala hai a gift coupon worth 500 rupees and that will be sent to you by post. और सवाल बहुत बहुत बहुत आसान है. जैसे कि आप जानते ही हैं 11 जून से शुरू हुआ वर्ल्ड कप आज अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंच रहा है. द ग्रुप स्टेज इज कंप्लीट और आज से शुरू हो रहा है.

The knockout stage, the stage of 32, 48 से 32 टीमें बस रह चुकी हैं. अब इस ग्रुप स्टेज में आप हमें बताएं द नेम ऑफ द प्लेयर, द नेम ऑफ द प्लेयर जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए. बहुत ही आसान, वेरी इजी. सो आप अपने मैसेज में अपना नाम डालें, अपना पता डालें, और बेशक यू पुट द नेम ऑफ द प्लेयर हु इज अ टॉप स्कोरर इन द ग्रुप स्टेज इन द वर्ल्ड कप 2026, और भेजे ऑन 5499 1294. जल्द से जल्द एक बार फिर दरख्वास्त करते हैं कि जितने भी लोगों की अभी हाल में जीत हुई है, प्लीज प्लीज गिव ओकेजन टू अदर्स. थैंक यू फॉर योर स्पोर्ट्समैनशिप.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग सो पैशनेटली. आपके सबरल मैसेजेस के लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया. कुछ समय पहले हमने आपसे एक सवाल किया था कि हु इज प्रेजेंटली द टॉप स्कोरर इन द वर्ल्ड कप 2026, और बहुत जल्द सही जवाब आ चुका. और जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया, जिनके नाम आज का इनाम जाता है, शी, यस इट इज अ शी फ्रॉम पोर्ट लुइस, और उनका नाम है शकीला लालू. शकीला जी, आपको बधाई. आपने सही जवाब दिया लियोनेल मेसी, जिन्होंने अब तक इस ग्रुप स्टेज में 6 गोल्स दागे हैं, जिनमें से 3 आज हैट्रिक अगेंस्ट अल्जीरिया. और इन 6 गोलों के बदौलत लियोनेल मेसी हैज बिकम द ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर इन मेंस वर्ल्ड कप हिस्ट्री. अब और क्या जलवा दिखाएंगे लियोनेल मेसी, ये तो आने वाला समय ही बता सकता है. बट हैट्स ऑफ टू द अटैकिंग टीम ऑफ अर्जेंटीना, जहां पर मेसी भी हैं, लुताओ मार्टिनेज भी हैं, जूलियन अल्वारेज भी हैं. सो इट्स गोइंग टू बी फायर एंड फायर एंड फायर. सो इफ यू लुक एट द गोल स्कोरर्स लिस्ट in the World Cup, बेशक पहले स्थान पर we have Lionel Messi of Argentina with 6 goals, and then we have Ex-Zico with 4 goals, Kylian Mbappe of France, Ousmane Dembele of France, Vinicius Junior of Brazil, Erling Haaland of Norway, और इन चारों के बाद we have Harry Kane, जिन्होंने अभी तक 3 goals स्कोर किए हैं, and he has become the highest scorer of the free lions in the history of football, British football, English football. So these were a bit of stats concerning the scorers of World Cup 2026 for this group stage. Lekin coming back to the game, badhai ho Shakila Laluji ko. आपको बहुत जल्द पोस्ट

0: के द्वारा एक वाउचर प्राप्त होने वाला है वर्थ 500 रुपीस ऑफर्ड बाय मिस्टिक वर्ल्ड द परफेक्ट गिफ्ट आर्या। अगर आप कुछ भी अपने चाहने वाले को अपने रिलेटिव को अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हैं बीट गोल्ड बीट गिफ्ट कार्ड और बीट ज्वेलरी सबों को धन्यवाद।
1: Music, Dr. Gutter.
2: RM2, Radio Musty.

0: Get ready for the biggest World Cup ever!
1: 2026 FIFA World Cup.
0: पहली बार होंगी 48 टीम्स 104 मैचेस। रेडियो मस्ती की टीम के साथ
1: चलिए
0: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
1: रेडियो मस्ती के साथ
0: वर्ल्ड कप मैगजीन।
2: जैसे कि आप जानते ही होंगे, कल रात से द ग्रुप स्टेज के मैचेस समाप्त हुए और आज रात से शुरू हो रहे हैं द नॉकआउट स्टेज, और इन सभी मैचेस को आप एमबीसी प्ले पर देख पाएंगे। ऑफ कोर्स वी डू हैव लाइव मैचेस ऑन स्पोर्ट्स 11, और उससे पहले प्लाटू, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लाटू विद द स्पोर्ट्स गुरुज ऑफ द एमबीसी, और उसके बाद यू बी हैविंग द मैचेस। लेकिन अगर आप घर पर नहीं हैं, अगर आप निकले हुए हैं, अगर आप काम पर हैं, अगर आप सफर में हैं, देन यू कैन वॉच योर मैचेस लाइव फ्रॉम योर मोबाइल ऑन एमबीसी प्ले, न्यू वर्ल्ड चैनल 1, न्यू वर्ल्ड चैनल 4 तक। सो इतने सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। So live this World Cup 2026 memorably, passionately by logging on to MBC Play. So let's have a look at the fixtures. जैसे कि हमने आपको बताया, आज की रात साउथ अफ्रीका, the Bafana who have qualified for the first time, if I'm not mistaken, for the knockout stage in the World Cup. उनका मुकाबला होगा मेजबान देश against Canada. इसके अलावा Germany against Paraguay seems quite easy for Germany. France against Sweden, it might not be that straightforward for France. In spite of the attack de rêve, Kylian Mbappe or Ousmane Dembélé के साथ, beware France. Netherlands against Morocco, Portugal against Croatia, Spain against Austria, United States against Bosnia Herzegovina, Belgium against Senegal. Hi, Senegal ke 5 star match jo unhone jeeta, wow, that was really wow, 5 star win. So ab dekhte hain ki Belgium ke khilaf, Belgium which has lost

सो आज का आज की रात का रेंडेवू मेजबान देश Canada playing against South Africa.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: सो इस फर्स्ट आवर के अंत में चलिए एक नजर दोहराते हैं आपके मैसेजेस की ओर। थैंक यू नाशरीन फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल कोट ऑफ योर्स। आप जो पोर्ट्री से हमारा साथ निभा रहे हैं और पोर्ट्री के हमारे सभी सुनने वालों को हम करते हैं सलाम। Hi Sanjay, next song going Fundis, Shreya Sampath celebrating a birthday today. Happy birthday to you, Shreya. Best wishes coming from Dadi Suryamati, Chachi Asha, Aarti, Sunita and Mama Anita and Chacha Arvind, Yashdev, Subiraj, Baba Manav and all Sampath family of NS Flogon wishing you, Shreya ji, a very happy birthday. ये मैसेज है रेशमा जी की ओर से फ्रॉम प्लान दिवस।

उनकी ओर से नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर हबी विराज मामा सीता पापा देवन दीपा रती ओजस्वी बॉबी किशन सचिन एंड लवीश साथ ही साथ इस समय हमारे दोस्त सूरज शर्मा सजिदा जी त्रियोले से हमारा साथ निभा रहे हैं उनकी ओर से गाना फॉर बेटा निशाल एंड फॉर द होल मनबोर्ड फॉर द होल फैमिली जो इस समय हमारा साथ निभा रहे हैं थैंक यू फॉर सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499129294

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: पांच बजकर नौ मिनट वेलकम डियर लिसनर्स इन द सेकंड आवर ऑफ म्यूजिक टकटकाता ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती होप यू हैड यू हैव बीन वेरी नाइस टाइम अपनों के संग इवन एट वर्क इवन इफ यू आर ड्राइविंग Feel free to send me to drop me a message on 549912 94.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: 5:22. Can you imagine, dear listeners? Okay, this is the last weekend of the month of June. अगले वीकेंड वी विल बी ऑलरेडी इन जुलाई, यानी कि हाफ ऑफ द ईयर इज ऑलरेडी गोन. ओ यस, अभी नया साल शुरू हुआ था एंड ऑलरेडी 6 months ओल्ड प्रैक्टिकली गोन. टाइम इज मूविंग वेरी फास्ट. 5:22. थैंक यू फॉर योर मैसेजेस. थैंक यू. जब ये आप लिखें, आप प्लीज़ अपना नाम अपने मैसेजेस में शामिल करें. इट विल बी फार इजियर फॉर अस टू रीड योर मैसेजेस अगर आपका नाम उसमें हो तो. नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर हबी विशाल, डॉटर श्रिया, बेटे नील एंड पापा सतीश. ये है प्रिया जी की ओर से, प्रिया इक्वली फॉर द होल अपाडू फैमिली. अगला गाना साथ ही साथ जाता है अनुराधा जी के लिए. बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस. आई डू होप यू एंजॉयिंग द सॉन्ग्स. लिखते हैं, आवर लव इज वन दैट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस इन ए कॉस्मिक डांस ऑफ इटर्निटी. वाओ. आई एम श्योर यू आर ऑल गोइंग टू एंजॉय

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: म्यूजिक टकटकाता
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: Yes, let's come to our segment. बहुत से लोग हमसे पूछते रहते हैं during the weekend and during the week. If I could repeat the fashion tip that I gave in the previous weekend. चलिए आज हम आपको after sale care के बारे में बात करते हैं. It's always good to buy the best things for your own fashion. लेकिन साथ ही साथ उनका ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि having the right, making the right choice. So इन दिनों जबकि हम we are all in winter, one good advice would be do not hang your sweaters. अक्सर ये होता है कि जब हम घर थके हारे पहुंचते हैं तो जो भी कुछ हम एड्रेस करते हैं उसे हम बस टांग देते हैं. You hang it on sometimes on a nail. So one of the best secrets to looking fab at all times is knowing the right way to care for and to store all the items in your wardrobe. And do not hang your sweaters. They say they are going to lose their form. So do not hang your sweaters. Second thing, avoid the dryer when you can. Avoid the dryer when you can. Thirdly, don't overdo when using laundry detergent. क्योंकि इसका बुरा असर आपके टिश्यू पर पड़ने वाला है. Fourth, learn the proper way to care for leather. If you're wearing leather, उसका भी आपका सही ढंग से केयर करना पड़ेगा. And admit that sometimes hand washing really is worth the time and the effort. Instead of always using machine, sometimes hand washing is really worth the time and the effort. These are the little tips of knowledge that will ensure कि आपका wardrobe हमेशा अच्छा दिखे, हमेशा healthy दिखे और हमेशा आपको एहसास लगे कि उसका नयापन ज्यादा से ज्यादा समय तक आप रख पाए. थैंक यू इन सभी टिप्स पर अमल करने के लिए.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
1: म्यूजिक टकटकाता
2: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Music Tactical.
1: RM2 Radio Musti.
2: बड़े क्विकली आपके मैसेजेस की और काउंटर कॉल की रहने वाली कल्याणी जी को हम करते हैं सलाम और लगे हाथ वहां के हमारे तमाम सुनने वालों को हाय एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग फिडेल टू रेडियो मस्ती हैप्पी बर्थडे टू मिस दिशिता मोर कोलीग्स रीना सीला सुनीता दीना सरिका रूमी अशीना रवि आश्ले अनिया लाइटा जीतन जी की ओर से फ्रॉम पोर्ट्रेस नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर भाभी अंजू एंड भाई संजय ही फ्रॉम नुवेल फ्रांस लिसनिंग टू योर शो एज यूजुअल वंडरफुल सिलेक्शन नाइस सॉन्ग फॉर द होल लोल फैमिली एंड स्पेशली हर बेस्ट फ्रेंड सलमा साथ ही साथ अगला गाना चाहते हैं अनिता जी के लिए जो फिको फ्लक्स से हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती हैं हेलो अनिता जी थैंक यू और साथ ही साथ यलेश श्याम जी को फिल्म दीवानियत का गाना बहुत ही पसंद आया थैंक यू फॉर टू यू एंड टू द होल श्याम फैमिली टू बी कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती
0: म्यूजिक टक टक
1: आरएम2 रेडियो मस्ती

0: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूं। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
1: अरे सुन सुन।
2: यस मां।
1: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
2: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
1: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

0: पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी ने आज सेशल के राष्ट्रपति पैट्रिक यमिनी और उनकी पत्नी वेरोनिक यमिनी की दावत में हिस्सा लिया। एडन आइलैंड पर यह मुलाकात मॉरिशस और सेशल के दरमियान गहरी दोस्ती के आधार पर की गई। अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर सेशल गणराज्य के राष्ट्रपति ने इच्छा जाहिर की कि सभी सेशलवाई लोग जश्न करें। महीना भर द्वीप समूह पर तरह तरह की गतिविधियों का आयोजन। अब से माहवार तौर पर औसतन आमदनी हासिल करने वाले लोग भी मकान मालिक बनने का ख्वाब देख सकते हैं। जो स्कीम सिर्फ कम आय प्राप्त करने वाले लोगों के लिए थी, उन्हें दूसरी श्रेणियों के लिए बढ़ाया गया है। विदेश में वेनेजुएला में कुदरती आफत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 1400 के पार। नमस्कार, आदाब। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी ने आज सेशल के राष्ट्रपति पैट्रिक यमिनी और उनकी पत्नी वेरोनिक यमिनी की दावत में हिस्सा लिया। ईडन आइलैंड पर यह मुलाकात मॉरिशस और सेशल के दरमियान गहरी दोस्ती के आधार पर की गई। दोनों छोटे टापू देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं। इस साल डॉक्टर नवीन राम गुलाम और राष्ट्रपति पैट्रिक यमिनी की ये दूसरी मुलाकात है। मार्च में राष्ट्रीय पर्व के मौके पर सेशल के राष्ट्रपति मॉरिशस के औपचारिक दौरे पर आए थे। इस लंच के दौरान अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ भी मौजूद थे। अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर सेशल गणराज्य के राष्ट्रपति ने इच्छा जाहिर की सभी सेशलवाई लोग जश्न करें। महीना भर द्वीप समूह पर तरह तरह की गतिविधियों का आयोजन किया गया। माहे टापू पर शुक्रवार से जश्न मनाया जा रहा है। आज एक फूड फेस्टिवल लगाया जा रहा है। रात 9 बजे यूनिटी स्टेडियम में स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में एक पैरेड किया जाएगा। करीब 12 मॉरिशन पुलिस अफसर हिस्सा ले रहे हैं। एमबीसी पत्रकार वालेरी काली और कैमरामैन ऋषि सिरतन वहां मौजूद हैं। उनकी रिपोर्ट पेश है।
1: औपचारिक समारोह से 24 घंटे पहले राष्ट्रपति पैट्रिक यमिनी के सामने अलग अलग इकाइयों की जगह निर्धारित किए जाने पर एक नजर। उनके मेहमानों से शहरवासियों किस जगह पर होंगे, हर हरकत पर भी ध्यान। कई मॉरिशन पुलिसकर्मी परेड में भाग लेंगे। मॉरिशस में ही इनकी तैयारी शुरू हो गई थी।
2: À Maurice même pendant 10 ans et environ 10 mois et une fine train pour Bandril qui nous...

0: bizarre faire ici.
1: Quand défiler pour une parade, qu'est-ce que ça demande à un policier, hein? Comment les bizarres tenir, comment les bizarres aider?
0: Pour mes affaires, nous bizarres smart, et nous bizarres fiers et nous bizarres disciplinés. Nous bizarres faire honneur à l'île Maurice et à la force policière mauricienne.
2: मॉरिशस और साथ में भारत का भी प्रतिनिधित्व दो कंटिंजेंट्स की तरफ से रूस और चीन से भी सदस्य सेशेल्स वाली इकाइयों के बगल में गर्व के साथ मार्च करेंगे। संगीत की धुन पर हर कदम से कदम मिलाना है। साउंड इंजीनियर हेनरिक क्रिमिनोट माइक और केबल को बार बार चेक कर रहे हैं।
3: Especially for the parade, they need very good sounds from the coming out from the brass band for them to know their steps. So, yeah. So if they don't hear the sounds properly, they might not walk correctly.
2: प्रोटोकॉल समारोह के अलावा सेशल्स वासियों को महीने भर के लिए अपनी स्वतंत्रता मनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। सप्ताहांत के दौरान संगीतमय वातावरण छाया है, साथ में फूड फेस्टिवल भी, क्रियोल पकवान, संगीत भी, साथ में सेशल्स वासी।
4: Nous avons fait sortir une nouvelle collection à l'occasion de sa grosse fête après 50 ans. Il vraiment est un moment marquant de l'histoire de notre pays. Alors, nous avons décidé pour faire sa collection variété couleur, variété style, bon t-shirt.
5: Ce week-end, pour travailler, ce week-end la fête.
6: Il donne l'opportunité aux amis, la famille, la population, la communauté pour venir ensemble. Fait que descendre là, mais. Très, très, très content. Hein? C'est différent auprès des années précédentes.
2: रविवार रात भर जश्न का माहौल बना रहेगा, सोमवार 29 जून की सुबह तक। 29 जून सेशेल्स की आजादी की 50वीं वर्षगांठ का दिन। वेनेजुएला में भूस्खलन की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 1430 तक पहुंच गया है। 3230 लोग घायल हुए हैं। माहिरों का कहना है कि गए 123 सालों में वेनेजुएला में ये सबसे गंभीर कुदरती वाकया पेश आया है। बचाव कार्रवाई तेजी और ठोस तरीके से की जा रही है। अदिति गनुअफ्तार।
7: भारतीय वायुसेना की एक राहत टीम वेनेजुएला में मदद के लिए पहुंची है। भारतीय विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने उम्मीद जताई कि इस फील्ड हॉस्पिटल यूनिट द्वारा पहुंचाई जा रही दवाइयों की खेप और राहत उपकरणों से भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की जनता को थोड़ी राहत पहुंच पाए और इस पहल से बचाव कार्रवाइयां और तेज हों। गुरुवार को वेनेजुएला में पेश आए 7.2 और 7.5 अंकों की तीव्रता वाले दो जोरदार भूकंप के झटकों से मरने वालों की संख्या 1430 पार कर गई है। राजधानी काराकास में कई इमारतें ढह गई हैं और लोगों को मलबों से निकालने की कार्रवाइयां जारी हैं, जहां हर तरफ तबाही का मंजर पाया जा रहा है। कुछ इलाकों में बचाव कार्यों में आई देरी को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है, क्योंकि टीमों को राहत कार्यों के लिए औपचारिक अनुमति का इंतजार करना पड़ा। इस बीच अमेरिका ने मदद के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें भेजी हैं, जिसके तहत प्रशिक्षित स्नीफर डॉग्स भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है कि इस आपदा से 6.7 मिलियन लोगों को जल्द ही आवास, भोजन और दवाइयों तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की सख्त जरूरत पड़ने वाली है।
2: फ्रांस में तेज गर्मी के चलते रेड अलर्ट जारी है। मरने वालों की तादाद 1000 से पार है के पार है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। गए 24 घंटों में फ्रांस में 104 मौतें दर्ज हुई हैं। फिर से स्थानीय स्तर की खबर। बहुत सालों से सार्वजनिक आवास योजनाएं कम आमदनी वाले घरों के लिए ही विकसित की जाती रही हैं, लेकिन बजट 2026-2027 में औसतन आमदनी वाले परिवारों के लिए भी नए कदमों का ऐलान किया गया। करीब 1000 आवास बनवाए जाएंगे और बुनियादी मूलढांचों के साथ 100 जमीनों को तैयार किया जाएगा। शुक्रवार को राष्ट्रसभा में आवास मंत्री ने कहा कि इन कदमों का मकसद 48,000 रुपये की माहवार तनख्वाह कमाने वाले लोगों के लिए हैं जो मकान मालिक बनना चाहते हैं। शहजाद जुमन, रजनीभेकर।
8: जमीनों के दामों में बढ़ोतरी, निर्माण और आवास संबंधी खर्च, इन सब के चलते आज मध्यम आय प्राप्त करने वालों के लिए मालिक बनना काफी मुश्किल हो गया है। आवास मंत्री ने बताया कि सामाजिक आवास के लिए एलिजिबिलिटी सीलिंग को पार करने वाले मॉरिशनों की कैटेगरी को अब तक जैसे भुला दिया गया है। आवास एवं भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा,
9: those who earn more than 48,000 rupees, those who earn and are youngsters who don't have homes and who cannot take a loan because of the

0: high prices of property, the affordable homes.
1: मॉरिशस में एक वर्ग के लोगों को जैसे भुला दिया गया हो, जो लोग 48,000 रुपए से अधिक का मासिक वेतन प्राप्त करते हैं, जो नौजवान काम करते हैं, कोई घर नहीं है और मकान की बढ़ती कीमत की वजह से एक कर्ज नहीं ले सकते हैं, हम बुनियादी मूल ढांचों से युक्त जमीन उपलब्ध कराना चाहते हैं। शुरुआत में उन्हें सहायता प्रदान करने के बेहतरीन तरीकों पर विचार कर रहे हैं, जैसे कि मसलन 1 मिलियन रुपए दें ताकि वे मकान बनाने का काम शुरू कर सके, साथ में 2 से 3 मिलियन रुपए का लोन ले सके, यही अंतर लाना चाहते हैं। इसके अलावा बजट 2026-2027 में बुनियादी मूल ढांचों से युक्त 100 टुकड़ी जमीनों की व्यवस्था का भी प्रावधान है, साथ में करीब 1,000 आवासीय इकाइयों के निर्माण का भी, जो इंटरमीडिएट आय प्राप्त करने वाले के लिए है। निजी सेक्टर की साझेदारी से इन्हें बनाया जाएगा। मंत्री शाकिल मोहम्मद ने आगे बताया, हम उनके लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे उपयुक्त मकान बनाने के लिए, बशर्ते कि वे बेहतर कीमत पर इसे बेच सके। निजी सेक्टर के साथ साझेदारी के सिलसिले में सरकार इस संभावना की जांच कर रही है ताकि प्रमोटरों को वित्तीय सुविधाएं दी जा सके, ताकि उन्हें परियोजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सके। वे भी इन प्रावधानों के तरीके निर्धारित करने हैं।
2: नामक नाले में प्रदूषण के चलते अधिकारी जांच कर रहे हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कार्यों की शुरुआत से पहले वाली प्रक्रियाओं में कमी नोट की। प्लेटफॉर्म मोरिस लाविरोनमों का मानना है कि जिम्मेदारी सभी सतह पर होनी चाहिए। संतना पोस्टनो यचना मिश्रा।
3: 10 जून को पॉइंटो साबल के गोल्डन कनाल में गंदे पानी के प्रदूषण के मामले में जांच जारी है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार बासाल्ट सोलर लिमिटेड ने सीवरेज पाइप्स के पास खुदाई कार्य से पहले अनुमति नहीं ली, जबकि दोनों पक्षों के बीच तय समझौते में ये निर्धारित है। वे लीवर एग्रीमेंट के तहत दोनों कंपनियों की जिम्मेदारी है WMA से इजाजत मांगना, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं दी। WMA का कहना है कि यदि इस प्रक्रिया का पालन किया गया होता तो इस घटना से बचा जा सकता था। किसी भी खुदाई कार्य से पहले स्वीकृति जरूरी है। हमने WMA के कार्यों के खर्चों के लिए कॉन्ट्रैक्टर को अंतरिम क्लेम भेज दिया है। वही दूसरी ओर प्लेटफॉर्म मोरिस लाविरोनमों का मानना है कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी केवल निर्माण कार्य करने वाली कंपनी पर नहीं डाली जानी चाहिए। संगठन का ये भी कहना है कि यदि संबंधित अधिकारियों ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया होता तो कई अधिक गंभीर परिणाम हो सकते थे। हमारा यही सवाल है कि क्या जायज है GECC कॉन्ट्रैक्टर को कागज देना या फिर सोलर फॉर्म को ही सभी कार्यों का भुगतान करना चाहिए था।
4: La ferme solaire qui se posait gain tout par l'autorisation et paye pour tous mes travaux, y compris travaux CEB.
3: फिलहाल बाजल्ट सोलर लिमिटेड ने हमारी प्रतिक्रिया संबंधित मांगों का कोई जवाब नहीं दिया है।
2: मॉरिशस में बड़े पैमाने पर मछली मार करने की बात एक बार फिर चर्चित मुद्दों में आ गई है। अप्रैल से 3 मॉरिशन कप्तान दुनिया के बेहतरीन फिशिंग गाइड्स में शुमार हैं। फिशिंग बुक द्वारा प्रतिष्ठित एंगलर्स चॉइस अवार्ड 2026 में उन्हें ये एजाज मिला। पोएंटो बीच में पिरामिड फिशिंग बोट से कप्तान माइक सिब्लें भी इनमें शामिल हैं। आज कबीर जयंती है। इस साल क्लेमेंसिया में मॉरिशस का पहला कबीर मंदिर बनाया गया, जो वादियों में छिपा एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ लोगों का आना जाना भले ही कम हो, लेकिन यहाँ की कहानियाँ कभी कम नहीं पड़ती। यहाँ का इतिहास कभी मिट नहीं सकता। यचना मिश्रा की ये खास रिपोर्ट।
3: यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं, लेकिन इस जगह के महत्व को जानने वाले यहाँ का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। पहाड़ियों में खोई हुई शांति से भरी ये जगह, जहाँ की शक्ति अपार है। इसकी दीवारें पुरानी अवश्य हैं, लेकिन इसकी दास्तान, इसका इतिहास उतना ही समृद्ध है। क्लेमेंसिया में देश का सबसे पहला कबीर मंदिर।
5: तब जब यहाँ पे गिरमिटिया मजदूर बस गए तो गिरमिटिया मजदूरों में कबीरपंथी लोग भी आए हुए थे। तो जैसे अन्य गांवों में भी मंदिर बनना शुरू हो गया, धर्म का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया, उसी प्रकार यहाँ पर बोला जाता है कि जो नॉर्थ प्रांत हैं, जो

0: उत्तरी भाग है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कबीरपंथी भाई बहन बसे हुए थे। इसी निमित्त आप देखेंगे यहाँ जो क्लेमोशा मंदिर है, बताया जाता है कि मॉरिशस का सबसे पुराना कबीर पंथियों का एक आस्था का केंद्र है।
1: 1860 में इसका निर्माण हुआ, जहाँ कबीरपंथी और कई महंत उपासना करने आए। उस समय भारत से आए गिरमिटिया मजदूर कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बीच उन्होंने संत कबीर की शिक्षाओं में आत्मिक शक्ति, आशा और जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त की। मान्यताओं के अनुसार भारत में भी ऐसी ही जगह है जहाँ की गुफाओं में महंत तप करने जाते हैं।
0: बताया जाता है इसका एक रेप्लिका मंदिर जो है वो भारत के बांधवगढ़ राज्य में पाया जाता है, जो उसका आप गुमवत वहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, छत जो बनाई गई है और जो इसका जो छवि है, जो प्रतिरूप है, जो आकार है, जो शिल्पकाल है इसका, सब बराबर जब आप देखेंगे भारत का जो मंदिर है। बांधवगढ़ जो मंदिर है वो पहाड़ पर है और ये जो मंदिर आप देखें, हम सभी को रास्ता पार करके ऊपर आना पड़ा मंदिर, और फिर जो आप इसके जो द्वार जब देखते हैं आपको उसको झुककर अंदर में प्रवेश करना होता है। तो बांधवगढ़ में भी ऐसी हैं, जब मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो जितना भी हमारा अभिमान है जो भी है, हमको उसको छोड़कर सिर झुकाकर मंदिर में अंदर प्रवेश करना होता है। फिर अंदर में जब आप जाएंगे तो एक गुफा आपको मिलेगा, जो गूढ़ ज्ञान है, रहस्य जो मई जो ज्ञान है वो कबीर साहब ने धनी धनदास साहब को वो गुफा में दिया था, तो ये गुफा आपको यहाँ पर भी मिलेगा।
2: जगह के बारे में मुझे बचपन से पता है, जैसे कि लेकिन आ नहीं सकते थे कि जैसे कि इतना भी एक्सेसिबल नहीं था पहले तो, लेकिन हर बात हम सुनते थे कि हाँ एक मंदिर है कबीरपंथ का क्लेमोशा में, वहाँ पर बड़े बड़े साधु ये सब वगैरह थे। अभी लगभग जैसे कि 5-6 साल हो गया कि हम हर बार जैसे कि एक यात्रा बनाते हैं दिसंबर में।
1: आज 150 शताब्दी से भी अधिक समय बाद क्लेमोशा का यह ऐतिहासिक कबीर मंदिर मॉरिशस की बहुसांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल प्रतीक बना हुआ है।
3: जो मंदिर है हमारे लिए जैसे कि एक तीर्थ जैसा है, और हर साल हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ध्यान भजन सत्संग सब कार्य हम लोग करते हैं। हमारा ये जो कबीरपंथ है मॉरिशस में, हम लोग उसी सत्य का प्रचार करते हैं। ये ऐतिहासिक जगह को हम हमारी फेडरेशन की ओर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इसको अपनी विरासत में ले लें, ताकि हम इसका अच्छे से देख रेख कर पाए और मतलब सभी लोग इसका लाभ उठा सके।
1: संत कबीर ने अपने दोहों और उपदेशों के माध्यम से मानवता, समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को एकता और सद्भावना का मार्ग दिखाती हैं।
4: अमेरिका के दक्षिण पूर्व में कंटकी में जबरदस्त बारूद आई है, कम से कम 4 लोगों की मौत हुई, पुल ढह गए हैं और दर्जनों बचाव कार्रवाइयों की शुरुआत की गई है। अधिकारियों ने कहा कि अगर और ज्यादा बारिश हुई तो हालत बदतर होगी। कंटकी में आपात स्थिति की घोषणा भी की गई है। उधर अफगानिस्तान में भी कुदरती आफत मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन पेश आए हैं, कम से कम 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। अफगानिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बहुत से लोग घायल भी हुए हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में करते हैं मौसम की बात। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आ रहे कुछ बादल रहकर स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात के दौरान घने बादल होंगे और पूर्व दक्षिण और सेंट और ऊंचे इलाकों में बारिश होगी, बाद में मौसम अच्छा होगा। कल दिन के दौरान बारिश होती रहेगी पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों में। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है। तापमान, सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 20 से 23, शहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 7:45 बजे सूरज उगेगा और

0: तो ये थी अब तक की खबरें आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी आवी दारी की मदद मिली है. आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एमबीसी के साथ जुड़े रहिए. नमस्कार और आदाब. शोक समाचार सुनिए थोड़ी देर में.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: रॉयल रोड पुस दुफ्लाक में 79 साल की 79 years old श्रीमती देवंती उचिगादू, श्रीमती देवंती उचिगादू पैदाइशी नाम कुदी सिंह जो साबित के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. अर्थे कल सपहर तीन बजे इनके बेटे राजेश उचिगादू के घर रॉयल रोड पुस दुफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौलोबीन बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM. सेवक सिंह लेन गोकुला में 87 साल की 87 years old श्रीमती मावती दुर्गा पैदाइशी नाम रावा जो मावती के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. अर्थे कल दिन के 11 बजे इनके बेटे रंजीत दुर्गा के घर सेवक सिंह लेन गोकुला से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामीची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. लालूव्रिया स्ट्रीट फ्लोरियाल में 73 साल की 73 years old श्रीमती शारदा देवी छट्टू पैदाइशी नाम बिसिसा जो गरीब के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. अर्थे कल दोपहर बाद एक बजे एलियनसन रॉयल रोड बोबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. महात्मा गांधी रोड स्टैनली रोजहिल में 76 साल की 76 years old श्रीमती हेमंती रिदोई पैदाइशी नाम रतन जो बसंती के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. अर्थे कल उठाई जाएगी. वक्त बाद में बताया जाएगा. कॉम्बेलाइन नंबर एक अंगीता वाकवा में 68 साल के 68 years old श्री विवेकानंद बालगोबिन जो विवेकानंद के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. अर्थे कल दोपहर बाद एक बजे इनकी पत्नी शोभा बालगोबिन के घर कॉम्बेलाइन नंबर एक अंगीता वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई में 71 साल की 71 years old श्रीमती आशा देवी गमन पैदाइशी नाम गुलोब जो आशा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल मुंबई में उठाई जाएगी. समय बाद में बताया जाएगा. शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Music, Dr. Gatta.
3: RM2, Radio Musti.

0: tune to Radio Masti.
1: जब तक दिल में एहसास है, मान लीजिए कि आप जिंदा हैं. 6:28 हुए हैं. You're listening to the last hour of Tak Taka Tak Radio Masti के लहरों पर. किसी ने क्या खूब हमें लिख भेजा है on 5499 1294. कि जमाने की भीड़ में खुद को खोया नहीं करते, जो बीत गया उसके लिए रोया नहीं करते. मिल जाएगा सब कुछ इसी जिंदगी में, मिल जाएगा सब कुछ इस जिंदगी में, बस अपनों को कभी रुलाया नहीं करते. Thank you for sending me your messages on 5499 1294.

अगर आप भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं पर निकले हुए हैं, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो शुक्रिया रेडियो मसीह के साथ जुड़ जाने के लिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष का इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष का इंसान चमक नहीं सकता। यारो जो जलेगा उसके सामने उजाला होगा। उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। नजर उठाओ सामने, जिंदगी खरी है।

0: music Dr. Gadda.
1: RM2 Radio Musti.
2: A big thanks to all those जिस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं. दिशा जी की ओर से नेक्स्ट गाना गोइंग फॉर ऑल द किहोदा एंड गोदी फैमिलीज फ्रॉम कॉटेज रिवियरा जोरांपार. एंजॉइंग आवर संडे आपके साथ संजी. विचित्र रिवियरा से सुनने वाले हबीब पुष्कर, मामा आरती, आंटी लता, पापा जू, संजीव, मौसा प्रदीप, ब्रदर संदेश, केशव, यश एंड सिस्टर प्रियंका. आज पूरी फैमिली घर पर हैं. थैंक यू जिन्होंने ये मैसेज हम तक पहुंचाया कि जिंदगी ने सवालात बदल डाले. जिंदगी ने सवालात बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले. हम तो आज भी वही हैं जो कल थे. हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: शाम के 4 से लेकर अभी तक हम प्यार की खुशबू लुटाते रहे, बिखेरते रहे। आप सबों को धन्यवाद कि आपने इस सफर में हमारा साथ निभाया। एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे खुशबूदार गीतों को लेकर अगले रविवार की शाम को। आपको छोड़े जा रहे हैं हमारे दोस्त निखिल के हाथों में, लेकिन चलते चलते अर्ज है, जो तू बाहर ढूंढ रहा है, जो तू बाहर ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर बसता है। मंजिल तक पहुंचने का बस ये एक सूफियाना रास्ता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय सियाराम।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: नमस्कार मॉरिशस, आपका संडे शाम कैसा चल रहा है? जैसे वैसे जैसे भी चल रहा है, मैं हूं निखिल और अगले दो घंटों तक आप हमारे साथ चल रहे हैं आपके अपने बॉलीवुड सिज़लर पर सिर्फ ऑन RM2। जी हाँ, आज बात करने के लिए बहुत सारा कुछ है। म्यूजिक मंथ का एंड ऑफ मंथ, साथ ही साथ पूरी दुनिया पर वर्ल्ड कप के रंग छाए हुए हैं भाई। अगर आप स्टीयरिंग व्हील के पीछे हैं, ऑफिस की ड्यूटी खत्म कर रहे हैं या फिर घर पर फैमिली के साथ रिलैक्स कर रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अगले दो घंटे सिर्फ हिट बॉलीवुड गाने, अच्छे वाइब्स और आपका साथ। चलिए शुरू करते हैं इस सवाल से।

0: Hollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: ये अगला गाना उन दिलों के लिए जो अभी टूटकर फिर से जुड़ने लगे हैं, उन आंखों के लिए जो अब आंसू छोड़कर फिर से हंसने लगे हैं।

0: Matt Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ दोस्तों, वीकेंड के आखिरी कुछ घंटे बाकी हैं। अगर मंडे का स्ट्रेस थोड़ा सा महसूस हो रहा है अभी से, तो उसे कुछ देर के लिए साइड पर रखिए। ये वक्त सिर्फ हमारे, आपके और इस म्यूजिक का है। जी हाँ, आप भी अपना पसंदीदा म्यूजिक मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं। 5499-1294 इज द मैजिकल नंबर। आपके पैगामों का हमें रहेगा इंतजार। तब तक हम आपको बता दें कि आप ही हमारा चैन हो इस गाने के साथ।

0: Hollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: संडे शाम ड्यूटी करने वालों को हमारा सलाम। ये गाना हम करते हैं बस और बस आपके नाम।

0: Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: दोस्तों देखो तो एक गाना बस चार पांच मिनट का ही होता है ना, लेकिन कभी कभी वही गाना सालों पुरानी यादें वापस ले आता है। इसे मैजिक को कहते हैं बॉलीवुड म्यूजिक। अगर आप पहली बार हमें सुन रहे हैं तो आपका स्वागत है बॉलीवुड सिज़ल में, और अगर आप हर संडे हमारे साथ रहते हैं तो आपको हमारे म्यूजिकल परिवार का हिस्सा होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस सफर को और खूबसूरत बनाते हैं एक और ऐसे गाने के साथ जो अपने ज़माने का सुपरहिट था लेकिन अभी थोड़ा सा भूला बिसरा है। आतिफ असलम की आवाज़ में जयंता भाई की लव स्टोरी से लिया गया अभी जा मेरे मेहरमा।
0: You're listening to a Radio Masti.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जो लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं, जो लोग अभी रोड पर हैं, उनसे कहेंगे कि आपका कहीं पर इंतजार हो रहा है भाई. प्लीज ड्राइव सेफ, रिस्पेक्ट अदर्स ऑन द रोड. वॉल्यूम तो चाहे हमारा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, लेकिन स्पीड थोड़ा कम. ये अगला गाना हम करते हैं आपके नाम.
0: You're listening to

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: ये अगला गाना हम करेंगे रोशनी जी के नाम, जिनका ये डेडिकेशन है फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2. साथ ही साथ ये जाता है अपाडू फैमिली ऑफ वोशनवा, दागन, श्वेता, रवीश, प्रिशा, लवशा के नाम. साथ में ये करेंगे अगला गाना मेधा, मनीष, श्रेया, आर्यन, नील, शीतल, विकी, रीतिना, नितिन, संगीता फ्रॉम मोताई ब्लॉक से.

0: Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ दोस्तों, आज जून का आखिरी संडे है और मेरे लिए खास म्यूजिक मंथ को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। लेकिन म्यूजिक की खूबसूरती देखिए कि कैलेंडर बदलता है पर गाने नहीं। वही गाने पुराने हर दिन हर पल एक नया एहसास लेकर आते हैं, एक नई कहानी बनकर आती है। इसी एहसास को सेलिब्रेट तो करता है हमारा ये बॉलीवुड सिज़लर। आप भी इस सेलिब्रेशन में जुड़ना चाहते हैं तो नंबर वही है 5499-1294, आपके पैगामों का हमें रहेगा इंतजार। ये अगला गाना हम करना चाहेंगे विकास सिबू एंड विहान राव को फ्रॉम संध्या ऑफ बोसोंस कास्काविल। ये खास

0: Yeah, dosto, welcome back to the second hour of Bollywood Sizzler only on RM2. यहाँ शाम को शुरू किया है ये सफ़र, अभी थोड़ी थोड़ी रात हुई है और रात को क्या करते हैं, बस चांद से बातें करते हैं और आपका आपके अगर पैगाम मिल जाए तो आपसे भी बातें कर लेंगे.
1: Bollywood Sizzler
2: RM2, your number one Bollywood radio station.
0: जी हाँ, चांद के साथ इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं. इन द वॉइस ऑफ के मोहन फ्रॉम मूवी टू स्टेट्स, वन ऑफ माय फेवरेट.

0: Matt Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: दोस्तों रोज की भाग दौड़ में हम सब दूसरों के लिए वक्त निकालते हैं है ना, लेकिन कभी कभी अपने लिए 10-15 मिनट भी नहीं रख पाते। एक कप चाय, एक वॉक या अपना फेवरेट गाना या बस कुछ देर की एकांत में खामोशी, ये जरूरी होता है क्योंकि जब आप खुद शांत रहते हो, जब आप खुद खुश रहते हो, तभी वो पॉजिटिविटी दूसरों तक पहुंच जाती है। अभी इफ यू टेकिंग योर ब्रेक विद अस विद बॉलीवुड सिज़ला ओनली ऑन आरएम2, तो ये गाना खास आपके लिए।

0: Hollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ दोस्तों, अभी वर्ल्ड कप का फीवर चढ़ा हुआ है. फुटबॉल के फैंस अपने फेवरेट टीम्स को सपोर्ट करें, अपने फेवरेट प्लेयर्स को सपोर्ट करें. वैसे ही हर म्यूजिक लवर का अपना एक फेवरेट सिंगर होता है, कंपोजर होता है, जिसको वो फॉलो करता है, जिसको वो प्यार देता है. और सिमिलैरिटी क्या है पता है? ना वो प्लेयर आपको जानता है, ना वो सिंगर आपको जानता है, ना वो कंपोजर आपको जानता है, लेकिन आपको उसकी कला से बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत प्यार होता है ना. तो ऐसे ही आज के शो में आपके लिए खास एक ऐसा गाना जो दो जेनरेशंस के लिए बहुत ही खास बना है. हम करेंगे ये गाना राजन जी के नाम और अमन जी के नाम, साथ ही साथ केशव और क्रिस्टी के नाम जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, आपके नाम ये खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी टुम बिन टुम.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जहाँ टूटे हुए दिल का दर्द शायद वक्त पूरी तरह मिटा न पाए, लेकिन वक्त हमें फिर से मुस्कुराना जरूर सिखा देता है। अगर आज किसी का दिल टूटा है तो याद रखिए, हर एंडिंग के बाद एक नई बिगिनिंग होती तो है, और तब तक म्यूजिक को अपना हम सफर बनाए रखिए। यह अगला गाना हम करेंगे उन सब टूटे दिलों के नाम,

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: या दोस्तों, संडे रात को काम करना मुझे बताया बहुत आसान नहीं होता. Essential services, police, hospitals, hotels, media, restaurants, emergency services, मैं जो भी अभी काम कर रहे हैं उन सभी लोगों को हम कहेंगे दिल से शुक्रिया. आप काम करते हैं तभी हमारा वीकेंड वीकेंड कहलाता है. आपके नाम हम करेंगे ये अगला गाना, और ये अगला गाना हम साथ में करेंगे रोशन हुकुम जी के नाम फ्रॉम बनाकाई, जो डेडिकेट करना चाहेंगे एक गाना फॉर हिज बुबू रानी श्वेता हुकुम. जस्ट वांट टू टेल हर दैट यू लव हर सो मच. और हमको डेडिकेट किया है ये अगला गाना. आबाद बर्बाद इन द वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का ये बॉलीवुड सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। मेरे साथ संडे की शाम बिताने के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग अभी रोड पर हैं उन्हें कहेंगे प्लीज ड्राइव सेफ। जो कल नए वर्किंग वीक की तैयारी कर रहे हैं, विशिंग यू वेरी प्रोडक्टिव वीक अहेड। मैं हूं निखिल, आपसे इजाजत लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और RM2 सुनते रहिए। गुड नाइट।

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: नमस्कार और स्वागत है आप सभी का RM2 पर लेट नाइट ग्रूव्स। रात का ये प्रोग्राम बिल्कुल सज चुका है और बॉलीवुड के सुर आपके साथ हैं। लेट नाइट ग्रूव्स जो चलेगा मिडनाइट तक। वैसे कहते हैं मुस्कुराहट की वजह ढूंढने मत निकलो, कभी कभी वजह खुद मुस्कुराहट से मिल जाती है। सो आज शामिल होते हैं एक ऐसे म्यूजिकल सफर के अंदर जहाँ पर म्यूजिक का होगा असर, आप नहीं करेंगे बिल्कुल भी सफर। मैं विकास करता हूँ आपका स्वागत।

पूरे दिन की भागा दौड़ी और अब कुछ वक्त अपने लिए। सफर लंबा हो तो घबराना नहीं, हर मूड पर मंजिल का एक नया पता मिलता है। क्या पता आप भी इस पते पर जाकर कुछ वक्त बिताएं। गाना पसंद हो तो जरूर गुनगुनाएं।

बॉलीवुड के गानों के साथ एक छोटी सी बात, हर रात अंधेरी जरूर होती है पर सुबह का सूरज कभी देर तक नहीं रुकता। अगर आज कोई चैलेंज है तो याद रखिए, ये दिन भी गुजर जाएगा, एक नया सूरज अपनी रोशनी के साथ कल जरूर नजर आएगा।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: आप सुन रहे अपना फेवरेट प्रोग्राम लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर, और हम पूछना चाहेंगे, कुछ लोग यादों में घर बना लेते हैं और कुछ यादें ही दिल में घर बना जाती हैं। आज कौन सा ऐसा गाना है जो आपको खास लगा? अरे यही तो है बॉलीवुड का मैजिक, हर एक सिचुएशन में कोई ना कोई गाना तो फिट हो जाता है। आपका साथ है तो प्रोग्राम सुपर हिट हो जाता है।

वक्त अपनी रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और कह सकते हैं कि इन गानों के साथ रात अब और भी हसीन होती जा रही है। खुद पर भरोसा रखना सीख लो, खुद पर भरोसा रखना सीख लो, दुनिया का भरोसा बोनस लगने लगेगा। यानी कि जो इंसान खुद पर ही भरोसा करके, अपने कदमों पर विश्वास करके आगे बढ़ता जाता है मंजिल की तरफ, तो फिर आप एक तरफ, दुनिया दूसरी तरफ। बस ये पता है कि सही रास्ते पर सही इरादे के साथ निकल पड़े हैं, तो बस अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना मत भूलना।

0: कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन किसी किताब से नहीं, एक गाने से मिल जाता है। जो बीत गया उसे कहानी रहने दो, जो बीत गया उसे कहानी रहने दो, जो आने वाला है उसे जिंदगी बनने दो। क्या बात है, आप किसी बात को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं बस, तो जरूरी ये सोचना कि वो अपने रिजल्ट तक पहुंच चुकी है बात। अगर आप उससे लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे एक और रिजल्ट के लिए, तो वक्त जाया होगा। क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए। भाई म्यूजिक की दुनिया है, अगले गाने से मुलाकात की जाए।
1: RM2 Radio Musti. Feel the Musti.

रात के सुकून भरे पल में एक ख्याल। रिश्तों की खूबसूरती लफ्जों से नहीं, एहसासों की सच्चाई से बनती है। आज किसी अपने को आप थैंक यू कहना चाहेंगे, किसी अपने को सॉरी कहना चाहेंगे? कहना मुश्किल है, कभी कभी लगता है, लेकिन साहब ईगो को साइड में रखकर और कॉन्फिडेंस के साथ कदम रखकर क्यों ना उनके प्राइवेट स्पेस में जाकर एक मैसेज के जरिए या फिर फेस टू फेस कहने का वक्त आ गया है। अगर रिश्तों में आप दरार नहीं चाहते, कोई टकराव नहीं चाहते और दूरियों को कम करना चाहते हैं, तो पहल तो करनी पड़ेगी। नहीं

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: बॉलीवुड की धुनों के साथ दिल की बातें। थोड़ा सा हंस लेना जरूरी है, थोड़ा सा हंस लेना जरूरी है, हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं है। तो बताइए आज किस बात पर आप खुलकर से खुलकर जिंदगी को जिया, वो पल वो लम्हे अपने मेमोरी कार्ड में स्टोर कर लीजिए आगे आने वाले वक्त के लिए।

0: रात गहरी हो रही है लेकिन बातें अभी बाकी हैं। जितना बांटोगे मोहब्बत को उतना ही दिल अमीर होता जाएगा। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, जो पॉजिटिव बातें करते हैं, और फिर देखिए साहब, आपकी ज़िंदगी भी फूल की तरह मुस्कुराएगी, खिलखिलाएगी और जो खुशबू है चारों ओर बिखरती जाएगी।
1: RM2 Radio Masti.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: दोस्तों थोड़ा रुककर भी चलना कभी कभी जरूरी हो जाता है। हर दौड़ जीतना जरूरी नहीं, कुछ पल जीना भी जरूरी है। अब सोचिए आखिरी बार वो कब था जब आपने वो सुकून भरे पल बाहें खोलकर हंसते खिलखिलाते कब जिए थे।
0: RM2 रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।

ये रात, ये गाने और आपका साथ, कुछ ख्वाब पूरे हो जाते हैं और कुछ हमें पूरा कर जाते हैं। कोई सपना, कोई याद, कोई मेमोरी, कोई ऐसा इंसान जो आपके दिमाग के मेमोरी कार्ड में फ्लैश होता रहता है। तो वक्त हो गया है उस तक अपनी आवाज पहुंचाने का। अगर कुछ कह नहीं पा रहे तो बॉलीवुड के गानों के साथ गुनगुना के ही सही अपना मैसेज पहुंचाने का।

चलिए इसी गाने के साथ अभी फिलहाल मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। ये 3 घंटे का सफर कब कैसे इतनी जल्दी खत्म हो गया पता ही नहीं चला ना। वैसे होता यही है, कहते ना गुड टाइम्स फ्लाई, पता नहीं क्यों वाई, लेकिन अगर आपको ये पसंद आया तो आपके लिए म्यूजिक तो हमेशा है, भरपूर है, 24/7 है RM2 पर। अभी मैं विकास आपसे इजाजत लेता हूँ, लेकिन एक बार फिर से मुलाकात होगी और जल्दी होगी। अगर आपने भी मिलने का वादा कर लिया तो मिलते हैं। अभी के लिए नमस्कार।